एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो के घड़ी में अभी 5:57 होने वाले हैं। अब हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगू विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट

0: साइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अभी हम रिले कर रहे थे हिंदी में समाचार। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और शुरुआत करते हैं आज की आराधना की इस देश वंदना के साथ।

0: ओम व्यास और साथी के गाए इस भजन के साथ ही आज की आराधना यहीं समाप्त होती है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात। विषय है मिर्च के प्रमुख रोग और नियंत्रण। वाचन स्वर अभिनव कौराहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज जानबो मिर्चा फसल के प्रमुख बीमारी और ओखर समेकित प्रबंधन। मिर्चा के बात करी तो मिर्चा विश्व के प्रमुख मसाला और साग फसल मन में एक है। भारत मिर्चा के सबले बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है, जौन विश्व भर के कुल उत्पादन में लगभग 40% के योगदान देते। बहुत जी किसान भाई मन मिर्चा के फसल लगाते हैं और बढ़िया ढंग से लाभ पाते, काबर मिर्चा के जिन रेट है कभू नहीं गिरा। तो आज बात करबो कौन कौन सा प्रमुख बीमारी है और खर कौन ढंग से हमन समेकित प्रबंधन करी। सबले पहली बात करी तो पौध गलन, जौन हर फसल के मुख्य बीमारी है। पौध गलन के समस्या मिर्चा के नर्सरी में पाए जाए वाले एक गंभीर माटी जनित रोग है, जौन पौधा के प्रारंभिक अवस्था में ही ओला नष्ट कर देते। ये रोग के बात करें मुख्यतः मृदा जनित फफूंद जैसे पाइथियम फाइटोप्थोरा और राइजोक्टोनिया सोलानी कारण होते। ये रोग बीज और माटी के माध्यम से फैलते और अंकुरित पौधा ला तेजी से प्रभावित करते। लक्षण की बात करी, बीजा अंकुरित नहीं हुए या अंकुरण के बाद सर जते, छोटे जन पौधा रही थे वो माटी के सतह के तीर से ही पादर होके गिर जते, पौधा के तना मुलायम होके गल जते। प्रबंधन की बात करी सबले पहली होते भाई बीजोपचार। बुआई से 24 घंटा पहली बीज ल ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना है, या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसेंस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना है। अगर हम रासायनिक व्यवस्था

0: 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना है। दूसर रोग के बात करी एंथ्रोक्नोज जिला धब्बा रोग और फल सड़न कहे जाते हैं। एंथ्रोक्नोज मिर्चा के एक प्रमुख फफूंद जनिक रोग है जो उन पौधा के वृद्धि फूल बने की प्रक्रिया और फल के गुणवत्ता ला प्रभावित करते। ये रोग मुख्यतः कोमल टहनी फूल और फल में आक्रमण करते जेखर से उपज और बाजार मूल्य दोनों में कमी आ जाते। लक्षण की बात करी कोमल टहनी मन के ऊपरी भाग सूख जाते जिला डाई बैक कहे जाते। फूल आय के अवस्था में एकर संक्रमण शुरू होते। संक्रमित फूल सूख के गिर जाते। फूल के डंठल सिकुड़ के सूख जाते। जिन फर होते मिर्चा के फल ओमा धसे हुए करिया करिया चकता कस धब्बा बन जाते जेखर से फल हा सरे लगते। रोग प्रबंधन के बात करी बीज ला हमन ला स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के उपयोग करना है। बीज के उपचार जरूरी है। आप जैविक उपचार करा चाहे आप मन रासायनिक उपचार करा। रासायनिक नियंत्रण की बात करी मेटालेक्सिकल और मैंकोजेब 8% और 64 WP 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाना है। लगभग 3-4 लीटर घोल प्रति वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र में ड्रेंचिंग करना है। या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब मिश्रित फफूंद नाशक ला 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना है। छिड़काव के समय की बात करी पहली छिड़काव फूल आए के समय, दूसरा छिड़काव फल बने की अवस्था में, तीसरा छिड़काव 15 दिन बाद। नर्सरी प्रबंधन की बात करबो तो नर्सरी में पानी के जमाव नहीं होए देना है। ज्यादा घना बुआई से बचना है। नर्सरी घाम जहां धूप बढ़िया ढंग से पड़त है वो स्थान में तैयार करना है। संतुलित सिंचाई करना है। ज्यादा नमी रोग ला बढ़ाते उपचारित और प्रमाणित बीज के ही उपयोग करना है। किसान भाई हो तीसरा मुख्य रोग की बात करें मिर्चा के मुरझन मतलब उकटा रोग। मिर्चा के उकटा रोग एक गंभीर मृदा जनिक रोग है जौन हा फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फफूंद के कारण होते। ये रोग पौधा के जड़ और संवहनी उतक ला प्रभावित करते जेखर से पौधा धीरे धीरे मुरझा के सूख जाते। पहचान के बात करी पौधा के मुरझाना ये रोग के प्रमुख लक्षण है। पत्ती मन ऊपर कति मुड़ के अंदर तरफ लुढ़क जाते। पत्ती मन पिवरा होके सूख जाते। खेत के कुछ स्थान में ज्यादा पौधा एक संग सूख जाते। तना और जड़ मन के अंदर संवहनी के भाग भूरा हो जाते। रोग प्रबंधन के बात करी रोग प्रतिरोधी किस्म मन के चयन करना है। बीज उपचार हमला ट्राइकोडर्मा विरडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से करना है। बायोफंगिसाइड के उपयोग हमला करना चाहिए जौन माटी में मौजूद हानिकारक फफूंद जैसे फ्यूजेरियम ब्राइजोक्टोनिया पिफिथियम ये सब बल्ला नियंत्रित करे में मदद करते। जैविक उपचार के बात करी ट्राइकोडर्मा विरडी 2 किलोग्राम ला 50 किलोग्राम गोबर के खाद में मिला के 15 दिन तक ढक के रख देना है। ओखर बाद खेत में उपयोग करना है। राम राम जय जोहार।
1: मिर्च के प्रमुख रोग और नियंत्रण इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती के बाद। वाचन स्वर था अभिनव गौराहा का। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।
2: एपिसोड 187

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन

0: रामचरितमानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन में आज चर्चा का विषय है बच्चों में बढ़ता आक्रोश और तनाव। आलेख है श्री वल्लभ चंद्र थानवी का।
1: आजकल बच्चों में बढ़ते हुए आक्रोश की बहुत चर्चा है। इसका कारण तनाव है। बच्चों पर बढ़ता पढ़ाई का बोझ इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। पहले की तुलना में आज बच्चों को बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। उनके अपरिपक्व मस्तिष्क पर ये एक अनावश्यक बोझ है। इस बोझ को सहन नहीं करने पर बच्चा झुंझला जाता है। वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है या आक्रोशित हो जाता है। वो अपने तनाव को झेल नहीं पाता है। तनाव कम करने के लिए जो अन्य क्षेत्र हैं वे तो उनके लिए अछूते ही रह जाते हैं, जैसे खेलकूद, मित्रों के साथ घूमने जाना, घर वालों से हंसी मजाक, छोटे बहन भाइयों के साथ छेड़छाड़। ये सब बच्चे के तनाव को हल्का करते हैं, पर भारी भरकम पाठ्यक्रम ने उससे ये सब छीन सा लिया है। थोड़ा भी समय मिलता है तो उसे होमवर्क पूरा करने की चिंता लग जाती है। यदि माँ बाप पढ़े लिखे हैं और उन्हें भी अवकाश है तो वे बच्चों की इसमें मदद करते हैं, पर ऐसा बहुत कम ही होता है।

0: आपाधापी की जिंदगी में माँ बाप के साथ भी वही समस्या है, समय कम और काम ज्यादा। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी बच्चों के तनाव को और बढ़ा रही है। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, उसकी पारिवारिक समझ भी बढ़ती जाती है। इस समझ से वो और भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हो जाता है। हर माँ बाप की इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं होती कि वे बच्चे को अच्छी ट्यूशन लगा सके। स्वयं उनके पास न समय है न समझ, सारा भार बच्चे को ही झेलना पड़ता है। बच्चों में बढ़ते आक्रोश का एक कारण आज की सामाजिक परिस्थिति भी है, जिसके कारण माँ बाप अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। बच्चा केवल समय नहीं चाहता, प्यार भी चाहता है। मध्यम वर्ग इन दिनों बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। माँ बाप दोनों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी या व्यवसाय करना पड़ता है। बच्चा माँ बाप का सानिध्य चाहता है कि प्रेम की पुकार उसे माँ बाप की गोद में कुछ देर वात्सल्य भरा आलिंगन चाहता है। पहले माँ से बच्चे को ये वात्सल्य प्रेम भरपूर मिल जाता था, जिससे बच्चे की संतुष्टि हो जाती थी। बच्चे में माँ का प्यार पाकर आत्मविश्वास भी बढ़ जाता था। वो नई स्फूर्ति लेकर पढ़ाई और अन्य क्रियाकलाप करने लगता था। पर आज ये सब स्वप्न सा हो गया है। माँ बाप का सानिध्य बच्चे में न केवल नई स्फूर्ति देता है, वरन उसे अच्छे संस्कार भी देता है। अपने कुल की परंपराओं और समाज में रहने की प्राथमिक शिक्षा माँ बाप के सानिध्य से ही संस्कारों के रूप में प्राप्त होती है, पर अब इसका अभाव हो गया है। अकबर इलाहाबादी ने इस स्थिति पर व्यंग करते हुए कुछ साल पहले ये लिखा था, तिफल में बू आए क्या माँ बाप के एतबार की, दूध तो डिब्बों का है तालीम है सरकार की। जब बच्चे के दूध और तालीम दोनों में ही परवश है तो मौलिक संस्कारों की अपेक्षा उससे कैसे की जा सकती है। बच्चों के बढ़ते हुए आक्रोश से निजात पाना है तो शिक्षाविदों को नए सिरे से सोचना होगा। कम पुस्तकों से अधिक ज्ञान अर्जित करने की पद्धति उजागर करनी होगी। माँ बाप को भी गंभीरता से सोचना होगा कि वे संपत्ति के पीछे संतति को न खो दें। बच्चे ही उनकी असली पूंजी है। इस पूंजी के महत्व को समझकर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और अच्छे संस्कार दें।
1: बच्चों में बढ़ता आक्रोश और तनाव, इस विषय पर अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में बता दें।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह सुबह 8:30 पर और सुबह 9 कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 10 कार्यक्रम अमराई के अंतर्गत आज आप सुनेंगे इंदिरा चंद्राकर, शांति यादव, सीता ठाकुर और भागवत सप्रे के गाए कुछ लोकगीत। सुबह 7:05 का समय होगा कार्यक्रम आज सुबह का। सदाबहार नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर। कार्यक्रम नए तराने हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनिएगा शाम 5:00। शाम 5:05 पर चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा।

पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। आप सुनेंगे शाम 5:35 पर, शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी। अभिजीत पोहनकर को आप सुनेंगे रात 8 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत में। सजेगी रजनीगंधा की महफिल रात 8:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों से हम जुड़ेंगे सुबह 9:15 से सुबह 9:55 तक, दिन के 11 बजे से 11:55 तक, दिन के 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9:15 से रात 11 बजे तक। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। समाचारों का अनुप्रसारण थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे।

0: अथवा लुप्ताः सन्ति इति कथ्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अन्यराष्ट्राणां भारतीयमूलनिवासिनः प्रायः 100 यावत् जनाः अपि सम्पर्करहितरूपेण एव तिष्ठन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीजायसवालः अवदत् यत् त्रिशूली वन जलविद्युत् परियोजनायां कार्यं कुर्वन्तः 63 भारतीयाः नागरिकाः प्रभावितक्षेत्रात् रक्षिताः। श्रीजायसवालः प्रसारमाध्यमैः सूचितवान् यत् जलाप्लावितक्षेत्रात् काठमाण्डुनगरं प्राप्तवन्तः तमिलनाडुराज्यात् 21 भारतीयाः नागरिकाः ह्यः नवदिल्ल्याम् आगतवन्तः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां नेपालदेशात् विमोचितान् तमिलनाडुराज्यस्य 21 तीर्थयात्रिभिः सह मिलितवान्। पश्चात् प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः नेपालसर्वकारस्य तस्य सेनायाः च उद्धारप्रयासानां कृते धन्यवादं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य 2-दिवसीय उज्बेकिस्तान देशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शवकत मिर्जियोयेव इत्यस्यामन्त्रणे ताशकन्दनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु कर्नाटक केरल लक्षद्वीपराज्यानां 3-दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा जनसेवा सांस्कृतिकपरम्परा उद्योग शैक्षणिक सहयोग मत्स्यपालनादि प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य ईरोडनगरे कोङ्गु विल्लालर इन्स्टिट्यूट् आफ् टेक्नोलॉजी ट्रस्ट् इत्यस्य संस्थापकदिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेंगलुरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडेवर्यस्य शतवार्षिक समारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन सेन्थिल कुमारः गतरात्रौ निर्णायकस्पर्धायां वलाज फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 3रा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितम्बर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों को अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज।

पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा ही कुछ कहा था खेलने कूदने वाले बच्चों की। खेलने कूदने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है और

उज्जवल भविष्य तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के ही हिस्से में आता है, लेकिन श्रोताओं, आज का समय कुछ और कहता है। आज पढ़ाई लिखाई का जितना महत्व है, उतना ही खेल कूद का भी है। आज हमारे खिलाड़ी विदेशों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, फिर वो क्रिकेट के क्षेत्र में हो या हॉकी के, टेनिस हो या बैडमिंटन, कुश्ती हो या मुक्केबाजी, हर क्षेत्र में देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। श्रोतो, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, और इस दिन को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, में हुआ था। वे अपने असाधारण गेंद नियंत्रण और गोल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक देश के नाम कराने वाले मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आज का दिन देश के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन और खेल जगत में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद को 1956 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 3 दिसंबर 1979 को वे पंच तत्वों में विलीन हो गए। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम उन्हें स्मरण व श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपने बच्चों को खेल के प्रति उत्साहित करते हैं, क्योंकि खेल कूद हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। खेलने से हड्डियां मजबूत होती हैं, दिल की सेहत सुधरती है और तनाव कम होता है, शरीर में लचीलापन आता है, वजन कम होता है, याददाश्त बढ़ती है और साथ ही साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए बच्चों में अगर किसी भी खेल के प्रति रुझान दिखे तो उन्हें सही दिशा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो खेल बस एक शौक बनकर ही रह जाएगा। तो श्रोताओं, जरूरी है हमें उनकी जिद को हौसलों की उड़ान देना, हर उड़ान में उनका साथ देना, तभी तो हर जंग में जीत होगी और हर मैदान में फतेह होगी।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कार्यक्रम आज सुबह में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्रोही कवि की। श्रोताओं, विद्रोही इनका नाम नहीं है, विद्रोही तो इनकी लिखी एक मशहूर कविता है। इनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम, जो न सिर्फ कवि थे बल्कि लघु कथाकारक, पत्रकार, गीतकार, संगीतकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका जन्म 24 मई 1899 को आसनसोल के पास चुरुलिया गांव में हुआ था। शुरुआती दौर में वे गांव के नाट्य समूह में शामिल हुए, जहां से उन्होंने नाटक और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए, लेकिन विद्रोही मन अंग्रेजों की गुलामी कैसे करता। फिर अपने गीतों और कविता के माध्यम से ब्रिटिश राज की खूब आलोचना की। उनकी कविताएं हमारे वीर क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ाती रहीं। उनके लेखन में स्वतंत्रता, मानवता, प्रेम और क्रांति जैसे विषयों का समावेश था। धर्म जाति से ऊपर वे मानवतावादी थे, इंसानियत ही उनका धर्म था और जागरूकता लाना उनका कर्म था। किसी भी धर्म में बंध कर रहने वालों में से नहीं थे वे। तभी तो अपने बच्चों का नाम भी उन्होंने दो धर्मों को मिलाकर रखे, जैसे काजी श्रव्यसाची, कृष्णा मोहम्मद, काजी अनिरुद्ध और अरिंदम खालिद। श्रुतो, नजरुल साहब ने लगभग 4000 गीत लिखे और संगीतबद्ध किए, जिन्हें सामूहिक रूप से नजरुल गीति के नाम से

0: माना जाता है। बंगाली साहित्य में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। बाद में इन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रोतों, आज के दिन 1976 में काजी नजरुल इस्लाम ने इस दुनिया से रुखसत ली। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: यातायात पर आधारित दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को उमा शंकर पांडे का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ परंपरा के अनुसार आज जिले में भोजली विसर्जन का आयोजन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जगह जगह अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे रट्टा चौक में भोजली प्रतियोगिता एवं भोजली विसर्जन का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शामिल होंगे। इसी प्रकार आज ही माँ बिलासा लोक कला एवं संस्कृति कला मंच पचरी घाट जूना बिलासपुर के तत्वाधान में दोपहर 3 बजे भोजली प्रतियोगिता एवं भोजली विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं तोरवा क्षेत्र में भी अरपा तट पर भोजली विसर्जन का विशाल आयोजन किया गया है। भोजली हमेशा ही छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय परंपरा रही है, लिहाजा इन आयोजनों में जन प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आम जनों से अनुरोध है, चूंकि यह वर्षा की ऋतु है, सभी जलाशयों में बहुत अधिक पानी है, अतः आप स्वयं एवं साथ है बच्चों तथा वृद्धों का ध्यान रखें, घाट से सर्वथा दूर ही रहें। आसपास की सड़कों में इस प्रकार चलें कि आम यातायात बाधित न हो। साथ ही यहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालक अपने वाहनों की गति कम रखें, विशेष सावधानी के साथ चलें। मित्रों, आज ही झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शहर में एक शोभा यात्रा निकाले जाने की योजना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शोभा यात्रा आज दोपहर 2:30 बजे हेमू नगर से निकलकर गुरु नानक चौक, दयालबंद, जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, देवी नंदन चौक, राम सेतु, मामाया चौक, नेहरू चौक, जरावाटा होते हुए सिंधी कॉलोनी पहुंचकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के व्यवस्थापक एवं इसमें चल रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, सड़क के एक किनारे चलें, कतार में चलें, शोभा यात्रा के मार्ग में फटाके न फोड़े। इस बीच यदि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन आए तो उन्हें तत्काल साइड दें। साथियों, जब भी आप सड़क में किसी वाहन के साथ हैं, वाहन चलाते समय किसी भी काम के आ जाने पर अपना वाहन एकाएक बीच सड़क में न रोके, ये घातक हो सकता है। सड़क से नीचे उतार कर वाहन खड़ा कर ही काम करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: बारिश का ये मौसम, हरी हरी घास, हरे हरे पत्ते देखकर लगता है मानो प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। ठंडी ठंडी हवा, भीनी भीनी खुशबू से मन महक उठता है और ये देखकर मन को कितना सुकून मिलता है। श्रोताओं, हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण ने हमें जीने के सारे संसाधन दिए हैं, पर हम अपने आप को सशक्त दिखाने के लिए, दूसरे देशों को डराने के लिए और हर तरफ खुद को आगे रखने के लिए ना तो किसी के स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं और ना ही पर्यावरण का। इन्हीं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को अपने 64वें सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव 64/35 पास करके परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की। फिर पहली बार 29 अगस्त 2010 को हमने ये दिवस मनाया और 29 अगस्त की तारीख ही इसलिए तय की गई क्योंकि इसी दिन 1991 में सोवियत सेमी पलांटिस परमाणु परीक्षण स्थल को बंद किया गया था। श्रोताओं, ऐसे हथियारों से देश अपने आप को ताकतवर तो समझता है, पर इनसे होने वाले जानमाल की हानि को अनदेखा कर देता है। ऐसे परमाणु बम से होने वाले विनाश का उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी, जिसे याद करके आज भी दिल दहल उठता है। तो सोचिए उस समय के विनाश का क्या मंजर रहा होगा। जिस जगह पर ऐसे परमाणु परीक्षण किए गए, उस भूमि का, वहां के पर्यावरण का क्या हाल हुआ।

होगा। श्रोताओं, इन्हीं सबको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। सारे देशों में भाईचारा हो, यही हमारी कामना है। लड़ाई झगड़े से तो सिर्फ नुकसान ही होता है, बस्तियां उजड़ती हैं, इंसान तड़पते हैं, और जो अभिमान में ताकत दिखाते हैं उनका कुछ नहीं जाता, भुगतने वाले तो बस आम इंसान ही होते हैं।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम आज सुबह से अनुमति लेने का, तो कीजिए स्वीकार सृष्टि का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अभी किया जा रहा था FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए आप आनंद लेते हैं सदाबहार नगमों का। पहला गाना श्रीनिवास की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल है, शंकर एहसान लोय का संगीत है और फिल्म है दिलचस्प।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

मुन्ना भाई MBBS इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की है, राहत इंदौरी के बोल है और अनु मलिक का संगीत है।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ में अभी आपने सुना प्रसून जोशी का लिखा और A.R. रहमान के संगीत से सजा फिल्म रंग दे बसंती का गीत। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का अनुप्रसारण अब हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान

0: भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308871। आप व्हाट्सएप नंबर 99682919888 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977985131607 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
2: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद फरहत।

0: विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास पारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said, during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
3: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, DOSLIC, and the 7th edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. In view of this, the visit of PM Modi becomes very important and is expected to lay the foundation for further cementing strategic and business partnership between both countries. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.

0: श्रोताओ नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, आज के भाग दौड़ के परिवेश में अपने लिए ही समय निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, और जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे शरीर में कुछ असामान्य होता है तो हमें जरूरत होती है कि हम इसे गंभीरता से लें और डॉक्टर से जाकर मिले। श्रोताओ, हमारा मुंह हमारे शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है। हमारे मुंह से जुड़े हुए कई शरीर के अंग होते हैं, जैसे कान, नाक, गला, तो इनमें भी कई तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं। श्रोताओ, अभी खान पान में हो रहे बदलावों और दिनचर्या में हो रहे परिवर्तन के कारण हमें कई ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, और कभी कभार हम गंभीर रोगों से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो श्रोताओ, आज के समय में कान, नाक और गले से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इनके उपचार क्या होते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने संपर्क किया है डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी से, जो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कान, नाक और गले की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम तौर पर देखने को मिलती हैं?
1: जी हाँ, जैसा विदित है कि नाक, कान और गला, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आमतौर पर यदि जैसे अभी का मौसम ठंड का है तो प्राय सर्दी के मरीज देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बीमारी मुंह से संबंधित, मुंह में छाला का होना, ये आम रूप से पाया जाता है। और तीसरा कान से संबंधित जो बीमारी है,

0: उसमें कान का दर्द होना या सुनाई कम देना, इस तरह की जो बीमारी है आमतौर पर अभी देखी जा रही है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब जब हम मुंह की बात करते हैं तो मुंह में जो अधिकतर हम देखते हैं कि मुंह में छाले हो जाना और मुंह में कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक मुंह की तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं?
0: मुंह में देखिए सामान्य बीमारी जिसमें से छाला का होना होता है, और यदि विशेष बीमारी या ऐसी गंभीर बीमारी जिसके इलाज में कई बार ये लाइलाज की तरफ में चला जाता है, वह कैंसर होता है। तो और इसके साथ साथ मुंह में चोट भी लग जाती है, ट्रॉमा भी होता है, कई बार मुंह के अंदर की जो चमड़ी रहती है वो दांतों के बीच में फंस करके कट जाती है, तो इस प्रकार से जीभ में सूजन आ जाता है जिससे बात करने में दिक्कत होती है, कई बार जीभ जो रहती है सही ढंग से काम नहीं कर पाती है और बात करने में बोली में लड़खड़ाहट रहती है।
1: जी जी,
0: तो ये मुंह की जो बीमारी है वह मुंह के छाले से शुरुआत होती है।

0: में सूजन आ जाता है जिससे बात करने में दिक्कत होती है, कई बार जीभ जो रहती है सही ढंग से काम नहीं कर पाती है और बात करने में बोली में लड़खड़ाहट रहती है।
1: जी जी।
0: तो ये मुंह की जो बीमारी है वह मुंह के छाले से शुरुआत होती है और गंभीर बीमारी कैंसर तक होने की भी संभावना रहती है।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कैंसर, तो
0: जी
1: अभी वैश्विक तौर पर देखें और साथ ही भारत को देखें तो ओरल कैंसर एक बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। तो हम ओरल मुंह के जो कैंसर होता है जिसे ओरल कैंसर कहते हैं, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और जब मुंह में कैंसर होता है तो इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं?
0: जी, मुंह में जो कैंसर होता है वो सामान्य रूप से सबसे पहले छाले के रूप में परिलक्षित होती है, अर्थात मरीज को ऐसा लगता है कि उसके मुंह में छाला हो गया है। आमतौर पर जो छाले रहते हैं वह 5 से लेकर के 7 दिन की समय अवधि में वो ठीक हो जाते हैं, परंतु जो कैंसर के जो छाले रहते हैं वह जो रहते हैं लंबे समय तक दवाई का उपयोग करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होते हैं, घाव भरते नहीं हैं और धीरे धीरे ये कैंसर के जो छाले रहते हैं वो आकार में बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें जो है कोई भी चीज टच होती है तो इससे ब्लड भी निकल सकता है, दर्द भी रहता है और इन छालों के कारण से गले में उभार आती है या गठान जो है गठान आना होता है। आमतौर पर मुंह के छालों में गठान आने की समस्या ना के बराबर रहती है, परंतु यदि मुंह के छाले यदि कैंसर वाले हैं तो निश्चित रूप से उसके गले में गठान यदि आ चुकी है तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उसका कहीं ना कहीं संबंध कैंसर से रहता है। और ये कैंसर मुंह का कैंसर अपने एरिया में प्रभावित है काफी संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। उसका प्रमुख कारण जो है दो रहता है। पहला कारण जो रहता है वह तंबाकू का सेवन, जो कि आमतौर पर यदि सरगुजा की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 40% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। ये तंबाकू में लगभग 52 प्रकार के केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि मुंह के कैंसर के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। और भी उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं जिनकी संख्या 4,000 से 7,000 तक बताई जाती है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं, परंतु 50 से लेकर के 55 तक के केमिकल्स जो होते हैं तंबाकू के वो जो रहती है मुंह के कैंसर को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यदि कारणों में यदि बात किया जाए तो तंबाकू जो है वह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरे कारणों में बात किया जाए तो मुंह में यदि दांतों से यदि बार बार मुंह के अंदर की जो त्वचा होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं वह यदि बार बार कट रही है तो इसमें भी ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ साथ मुंह कटने के साथ साथ ये जीभ जो रहती है वह भी यदि बार बार कट रही है, बार बार ट्रामा यदि हो रहा है तो उसमें भी इस तरह के कैंसर होने की संभावना हो सकती है।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई एक हिंदी गीत हमें बताएं जो इस कार्यक्रम के दौरान हम और हमारे श्रोता सुन सकें।
0: जी हाँ, ये गीत जो है काफी मेरे समीप है जिसमें जिसके बोल है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: जी जी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैलेन गुप्ता जी से, जो प्रोफेसर हैं नाक कान गला विभाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे ओरल कैंसर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, को जैसा आपने बताया कार्यक्रम में कि तंबाकू, गुटखे, जिनसे मुंह के कैंसर का खतरा होता है, इनके उपयोग के अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं जो मुंह के कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं?
1: कुछ अधिकांश यदि मुंह के कैंसर की यदि बात करें तो 80% से लेकर के 95% तक का कारण जो है वह देखने के लिए तंबाकू का सेवन होता है। 5% अन्य कारणों में यह अनुवांशिकी कारण भी हो सकता है, जिसमें से यदि परिवार में किसी को यदि कैंसर पहले से रहा है तो मुंह में कैंसर होने की संभावना जो है वह उसके बनने की संभावना रहती है। और जो तीसरा कारण के बारे में मैंने जिक्र किया था, यदि मुंह में यदि जो दांत है वो यदि शार्प है या नुकीले दांत है, जिससे बार बार जीभ में या मुंह के अंदर की म्यूकोसा में यदि चोट लगती है तो बार बार घाव बनने के कारण से भी यह जो है कैंसर हो सकता है।
0: जी, जी,
1: और मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जो कैंसर होते हैं वो उसके जो छाले रहते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो लगातार जो रहते हैं बढ़ते रहते हैं, परंतु जो सामान्य वाले छाले रहते हैं वो कई बार जो रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, फिर से दोबारा होते हैं। तो जो ठीक हो जाते हैं बार बार छाले होते हैं वह कैंसर के प्रकार में नहीं आते हैं। कई बार मरीजों को ये लगता है कि उनको छाले जो है बार बार हो रहे हैं, तो ये कहीं कैंसर का तो रूप नहीं है। इस बात में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि छाले पूरी तरह से यदि ठीक हो जा रहे हैं तो इसका अंदाज यह निश्चित रूप से है कि वह छाले आपके कैंसर के छाले नहीं है।
0: जब किसी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना हो जाती है तो उसके कौन कौन से मेजर सिम्टम्स है जो मुंह के कैंसर में प्रकट होते हैं?
1: जी, सबसे पहला चीज तो ये रहता है कि देखने पर ये जो छाले रहते हैं वो हील नहीं होते हैं, अर्थात नॉन हीलिंग अल्सर जिसे हम लोग टर्म को यूज करते हैं, अर्थात घाव बना रहता है जो समय गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात रहती है कि जो गले में गठान के रूप में ये कैंसर की बीमारी गले तक पहुंचती है तो गले में गठान आती है। तीसरी बात रहती कि ये बीमारी यदि जीभ के नीचे यदि आती है तो जीभ जो रहती है मुंह नहीं कर पाती है, तो बोलने में खाने पीने में ये जो रहती है वह दिक्कत होती है। चौथी बात होती है कि चूंकि छाले हमेशा बने रहते हैं तो इस प्रकार के छालों में मरीज को मिर्च मसाला का चीज खाने में विशेष रूप से सामान्य की तुलना में ज्यादा तकलीफ होती है। यदि ऐसे कोई भी सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सिम्टम्स में कैंसर में भी होते हैं, और भी दूसरे मुंह के छाले में हो सकते हैं, परंतु ये जरूरी है कि समय रहते हुए इसका चिकित्सक से दिखा करके उचित चिकित्सकीय परामर्श और इलाज जो है वह लिया जा सके, ताकि यह बीमारी कैंसर जो कि आरंभिक स्थिति में पूरी तरह से इलाज से ठीक हो सकती है, परंतु यदि इसमें कोई लापरवाही बरती गई या इसके इलाज में या लक्षण को पहचानने में देरी हुई तो यह कैंसर का बीमारी जो है वह लाइलाज हो जाता है।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसके प्रथम स्टेज यानी इसे अर्ली डायग्नोस किया जाए तो व्यक्ति की बचने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी,
0: तो
1: पूरी तरह से व्यक्ति सामान्य जीवन भर जो है व्यतीत कर सकता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं कि कई बार जो अत्यधिक गुटखा, तंबाकू और नशे की चीजों को सेवन करते हैं उनका मुंह जो है खुलना बंद हो जाता है या एक फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए करते मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे कैंसर जो है वह किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। ये जो है हमारे शरीर में रक्षात्मक कवच रहती है, ये रक्षात्मक कवच जो है म्यूकोसा के रूप में रहती है, मुंह में म्यूकोसा के रूप में रहती है। जब तक ये कवच यदि मजबूत है तो किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता है, परंतु ये कवच यदि टूट जाता है अर्थात छाला बन जाता है जैसा, तो फिर वैसे स्थिति में ये कवच टूटने के बावजूद बाद में ये जो है कैंसर बनने की संभावना ज्यादा रहती है। गुटखा जो खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, कई बार देखा गया है कि उनका मुंह जो रहता है वह कम खुलता है या ज्यादा मुंह खोल नहीं सकते हैं, तो उसका कारण क्या रहता है कि जो म्यूकोसा की जो सामान्य सेल्स रहती हैं वह डैमेज हो जाती हैं और उसके स्थान पर फाइब्रस टिश्यू जो रहती है

0: जो कि कड़ा रहता है, जिसमें से लचीलापन एकदम ना के बराबर रहता है, ऐसे टिश्यू जो रहते हैं वह लगातार गुटखा या तंबाकू या पान के चबाने से वह प्रतिस्थापित हो जाते हैं और व्यक्ति जो है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। धीरे धीरे यह आरंभिक स्थिति रहती है। यदि ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति का मुंह कम खुल रहा है तो उसमें यदि चोट लगती है, सामान्य रूप से छाला होता है, तो सामान्य की तुलना में जैसे मैंने चर्चा किया कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस वाले मरीज में यह छाला को ठीक होने में लंबा समय हो जाता है और कई बार ये छाले जो रहते हैं कैंसर के छाले जो रहते हैं बन जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस या मुंह का कम खुलना भी एक तरीके से ये कैंसर के पहले का लक्षण होता है। क्या ये कैंसर नहीं होता है? समय रहते यदि व्यक्ति यदि ये सब नशा से यदि दूर हो जाता है तो ये चांसेस रहती है कि धीरे धीरे उसका मुंह जो रहता है नॉर्मल रूप से खुल सकता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब एक कहावत है कि सावधानी ही बचाव है, तो यदि हम देखें कि कैंसर के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और हमें इन्हें अर्ली डायग्नोसिस करवा लेते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो इसके कैंसर के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ स्टेज होते हैं, तो इसमें जो इन स्टेजेस की अगर हम तुलना करेंगे तो यदि व्यक्ति फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस हो जाए तो उसके जीने की चांस बढ़ जाती है, और यदि इसके बाद के और जो स्टेजेस होते हैं वहाँ पर कितना चांस होता है मरीज के बचने के?
0: उसमें भी आज की डेट में ट्रीटमेंट को लेकर एडवांसमेंट है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी काफी एडवांस स्थिति में है, तो व्यक्ति को निराश तो नहीं होना है, परंतु जैसे जैसे बीमारी फैलती चली जाती है वैसे वैसे जो है बीमारी को ज्यादा मात्रा में निकालने की आवश्यकता बढ़ती है, तो व्यक्ति का जीवन जो रहता है कम्प्रोमाइज जाता है। सपोज कि यदि व्यक्ति यदि मुंह से यदि खाना नहीं खा पा रहा है, जबड़ा उसका निकाल देना पड़ा तो अल्टरनेट खाने के लिए उसके पेट से व्यवस्था करनी पड़ती है, सांस यदि नहीं ले पा रहा है तो फिर सांस में अलग से उसको सांस की नली लगानी पड़ती है, तो व्यक्ति का जीवन तो लंबा कर सकते हैं बाद के समय में, परंतु जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है सामान्य व्यक्ति की, वह सामान्य क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहते हैं वह नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि मुंह के संबंध में, छाले के संबंध में यदि थोड़ी सी भी संभावना है, थोड़ी सी भी शंका है, तो निश्चित रूप से आरंभिक स्थिति में चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए और उचित परामर्श के बाद में, स्पेशली ऐसे छाले जो कि लगातार 10 दिन तक बने हुए हैं और ठीक नहीं रहे हो रहे हैं, उनको जरूर चिकित्सकीय परामर्श से ही इलाज जो है वह ले लेना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और जैसा आपने बताया कि जो कैंसर के स्टेजेस होती हैं उसमें जितना जल्दी अर्ली डायग्नोस होगा बचने के चांसेस उतने अच्छे होते हैं, तो डॉक्टर साहब हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ओरल कैंसर होता है तो इसका यदि जांचें की जाए और जांच करने के बाद पता चलता है कि ओरल कैंसर है, तो सबसे पहले इसकी जांचें किस तरह होती हैं और इसका पता किस तरह लगाया जाता है?
0: जी, सबसे पहला चीज ये रहता है कि कुछ सिम्टम्स जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति के मुंह में ऐसे छाले रहेंगे जो कि लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई उनकी चली हुई है, पूरी तरह से ठीक हुए ही नहीं है, लगातार बने हुए हैं। दूसरा इसका आकार और प्रकार, आकार प्रकार में निश्चित रूप से ये बढ़ता हुआ है और इसको टच करने पर कई बार जो रहती है ब्लीडिंग होती है। तीसरी बात है कि गले में जो है गठान का पाया जाना, इस तरह की सिम्टम्स। चौथी बात ये है कि उसका मुंह खोलने में कम होना, खाने को निगलने में दिक्कत जाना, इस तरह की जो मुंह की जो सामान्य फंक्शन या कार्य होता है वह प्रभावित होना, यदि इस तरह की चीजें यदि हो रही है तो निश्चित रूप से एक कैंसर होने की संभावना जो रहती है ऐसे केसेस में बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही करनी चाहिए कि यदि किसी प्रकार की नशा है और इस तरह के सिम्टम है तो तत्काल रूप से चिकित्सकीय परामर्श जो है लेने की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात है कि इसको हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं, ये तो सामान्य रूप से जांच की बात होगी। इसको कंफर्म करने के लिए दो मेथड होती है। पहला एक मेथड रहता है यदि गले में गठान यदि है इस तरह के छाले के कारण से, तो उस समय FNAC या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऐसा एक टेस्ट होता है जिसमें से सुई डाल करके उस गठान से कुछ द्रव्य निकाला जाता है जिससे ये चीज साबित होता है कि इसमें कोई कैंसर तो नहीं है। दूसरा चीज छाले से बायोप्सी ले जाता है, छाले का बहुत छोटा सा भाग निकाला जाता है। आमतौर पर कई बार लोग इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं बड़ा टुकड़ा निकालेंगे या फिर हो सकता है कि इस तरह के जांच से बीमारी फैल जाए, परंतु मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा

0: ये जांच अत्यंत जरूरी होती है। बिना बायोप्सी की जांच से कभी भी कोई भी सिम्टम्स, चाहे वह कैंसर जैसा ही क्यों ना दिख रहा हो स्पष्ट रूप से, फिर भी उसको कैंसर नहीं माना जा सकता है। तो बायोप्सी में बहुत अत्यंत सूक्ष्म भाग, जिसमें 0.5 सेंटीमीटर के लगभग का भाग जो रहता है, वह निकाला जाता है और उसको जांच किया जाता है। ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन में इसका रिपोर्ट आ जाता है और ये चीज कंफर्म करती है कि वाकई में व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। बाकी जो दूसरी जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है, जिसमें से सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीजें हेल्प करती है, परंतु कंफर्म जो पुष्टि करने का जो कार्य है वह केवल और केवल बायोप्सी के द्वारा होता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर का जो इलाज है वो कितना असरकारक होता है या कितना इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है?
0: जी हाँ, ये मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा। यदि ओरल कैंसर हो गया है तो स्टेज फर्स्ट और सेकंड ये पूरी तरह से क्यूरेटिव रहता है और मरीज पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति की तरह में यह ठीक हो सकता है, परंतु स्टेज तीसरा और चौथा स्टेज में व्यक्ति का में चेहरे में विरूपता आ सकती है और उसको बार बार जो है फॉलोअप के लिए आना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह की बीमारी को जड़ से नष्ट करने के लिए लंबा समय हो सकता है। परंतु वर्तमान स्थिति में यदि मुंह का कैंसर यदि फोर्थ स्टेज तक भी पहुंच गया है तो भी उसके मरीज की जीवन जो है वह लंबा कर सकते हैं, परंतु अंतर यही रहता है कि वह व्यक्ति जितना एडवांसिंग स्टेज रहता है वैसी स्थिति में वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा कंप्रोमाइज या असामान्य उनका जीवन हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि तंबाकू, गुटखा, अन्य जो मादक पदार्थ हैं, नशे की जो चीजें हैं, इसे लेना कितना हानिकारक हो सकता है और हम मुंह के कैंसर से कैसे बच सकते हैं?
0: जी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो तंबाकू है, गुटखा है और अन्य नशा की चीजें जो कि क्षणिक मानव शरीर में आनंद के भाव पैदा करते हैं, परंतु जो शरीर में स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है वह निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिसमें से तंबाकू और गुटखा ये शरीर में जो कैंसर से शरीर को बचाती है, जो म्यूकोसा जो जिसका स्वस्थ रहना आवश्यक होता है उसको ये क्षरित करती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि नशा से दूर रहे, यदि हम नशा से दूर रहते हैं तो कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है।
1: जी जी जी, हमारा खान पान कैसा हो कि हमारा मुंह का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे?
0: जी, मुंह के स्वास्थ्य को अच्छे बने रहने के लिए ये जरूरी है कि कुछ विटामिन जो है वो शरीर में अपने पौष्टिक आहार में नियमित रूप से सेवन करें, जिसमें से विटामिन ए, बी, सी और स्पेशली ई विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इन चीजों का नियमित रूप से सेवन करें तो मुंह का जो स्वास्थ्य है, ओरल स्वास्थ्य जो है वह अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो विटामिन है ये यदि कोशिश करें कि जो हमारे जो सब्जी में है, फल में है, इनके द्वारा यदि हमारे शरीर को यदि मिलता है तो वह ज्यादा हितकर रहता है, वनस्पति ये कि हम कोई मेडिसिन वगैरह का सेवन करें। तो मुख्य रूप से अभी के जो सीजन में मटर काफी ज्यादा रहता है जिसमें से B12 की अधिकता रहती है, अभी केला वगैरह रहता है जिसमें विटामिन ए की रहती प्रचुरता रहती है, गाजर वगैरह जैसे मौसमी सब्जी है उसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जो सीजनल सब्जी है उनका उपयोग जो है अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे मुंह के से संबंधित बीमारी से अपन बच सके।
1: जी जी, तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैलेन गुप्ता जी से, जो कि प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को मुख के कैंसर के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप मुंह के विभिन्न रोग और ओरल कैंसर के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कार्यक्रम बातों बातों में के लिए आइए फिर जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।

0: इसमें सुनिए, छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश में डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही हाल के वर्षों में साइबर ठगी के मामलों में भी काफी वृद्धि देखी गई है। अधिकांश साइबर ठगी के मामलों में यह पाया गया है कि लोग जागरूकता, सतर्कता और समुचित जानकारी के अभाव में साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा साइबर जागृति अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री रोहित झा। श्री झा इस समय छत्तीसगढ़ पुलिस में गुप्तवार्ता विभाग में पदस्थ हैं। रोहित जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: रोहित जी, बताइए कि जो साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है वह कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा?
2: जी, छत्तीसगढ़ पुलिस का यह अभियान 15 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है और इसे हम 2 अक्टूबर 2026 तक चलाएंगे।
1: जी, करीब 1.5 महीने का यह अभियान है।
2: जी, लगभग 1.5 महीने का अभियान है।
1: इसका मूल उद्देश्य क्या है इस अभियान का?
2: इसको मुख्य रूप से शुरू करने का विचार यह था कि साइबर क्राइम आज के तारीख में बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रत्येक व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल का फोन है वह साइबर क्राइम के लिए एक प्रकार से वर्नेबल है।
1: जी।
2: तो दिन प्रतिदिन लोग इस क्राइम से न केवल रूबरू हो रहे हैं बल्कि प्रभावित भी हो रहे हैं।
1: बिल्कुल जी।
2: और जरूरत इस बात की है कि हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बच सकें ताकि हम साइबर क्राइम से प्रभावित न हों। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को, जन सामान्य को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने और साथ ही साथ उनको यह बताने कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है जिससे वो साइबर क्राइम से बच सके, यह एक संकल्पना ली गई कि हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें लोगों के बीच में जा करके हम लगातार उनको साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर सकें।
1: जी, इसमें जैसे करीब आपने जैसे बताया कि लगभग 1.5 महीने लंबी अवधि का यह अभियान है, 1.5 महीने एक बड़ी लंबी अवधि होती है, तो इस दौरान यह अभियान कितने चरणों में संचालित होगा और अलग अलग चरणों में समाज के किन किन वर्गों पर फोकस किया जाएगा, किस तरह से इस पूरे अभियान को प्लान किया गया है?
2: जी, यह कार्यक्रम 7 सप्ताह तक चलेगा। इसमें 7 सप्ताह को हमने अलग अलग विषयों के लिए बांटा हुआ है। पहले सप्ताह के दौरान हम इसे विद्यार्थी एवं युवा केंद्रित रखा है हमने। दूसरे सप्ताह में हमने वित्तीय धोखाधड़ी एवं यूपीआई सुरक्षा से संबंधित विषयों को रखा है। इसका लक्षित समूह बैंकिंग

0: वित्तीय संस्थान है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम बैंकों, एटीएम परिसरों, बैंकिंग सेवा केंद्रों एवं अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से जो वहां के अकाउंट होल्डर्स हैं
1: जी,
0: उनको, आम नागरिकों को यूपीआई फ्रॉड, फर्जी कॉल मैसेजेस, ओटीपी, पिन साझा करने संबंधी, क्यूआर कोड आधारित जो ठगी होती है, इन सब के बारे में मौके पर ही जागरूक कर सके
1: जी।
0: इसके अलावा जो तीसरा सप्ताह हमारा शुरू होगा जो 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा, इसको हमने वरिष्ठ नागरिक केंद्रित रखा है।
1: अच्छा।
0: जैसा कि आपने अभी देखा होगा हाल ही के दिनों में कि डिजिटल अरेस्ट नाम की एक शब्दावली चल निकली है
1: जी।
0: इसका मुख्य टारगेट हमारे वरिष्ठ जन है
1: जी।
0: तो हमने इस सप्ताह में मुख्य रूप से डिजिटल अरेस्ट, फर्जी अधिकारी बन के जो फर्जी कॉल आते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जो धमकियां होती हैं जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रभावित होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने तीसरा सप्ताह पूर्ण रूप से डेडिकेट किया है
1: जी, वरिष्ठ नागरिकों को
0: जी। इसके बाद हमारा जो चौथा सप्ताह होगा
1: जी,
0: उसमें हमने महिलाओं और जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको केंद्रित रखते हुए महिला कॉलेजों में एवं अन्य महिला संगठनों में महिलाओं को जो स्मार्टफोन की प्राइवेसी की सेटिंग्स, सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा, इन सब विषयों पे जो व्यक्तिगत, चूंकि महिलाओं के साथ फेक आइडेंटिटी, फेक पिक्चर मॉर्फिंग करके बहुत सारे अपराध होते हैं
1: जी,
0: तो इन सब अपराधों से बचने के लिए तथा साथ ही साथ जो ऑनलाइन बहुत सारे उत्पीड़न होते हैं आज के समय में, साइबर स्टॉकिंग एक बड़ा मुद्दा है
1: जी,
0: तो इन सब विषयों पर जागरूक करने के लिए हमने अपना चौथा सप्ताह महिलाओं एवं बच्चियों को डेडिकेट किया है
1: जी।
0: जो पांचवा सप्ताह है इसमें हमने असंगठित क्षेत्र के युवा, श्रमिक, खासकर ऐसे लोग जो नौकरियों की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को केंद्रित रखते हुए हमने रोजगार कार्यालयों में, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, श्रमिक सहायता केंद्र, जो सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जो पीएसयूज हैं, वहां पर जाकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में सामान्य तौर पर रोजगार की तलाश में युवा होते हैं उनको फर्जी नौकरी के विज्ञापनों, ऑनलाइन जॉब ऑफर, फर्जी भर्ती एजेंसियों, रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी, इन सब चीजों से जागरूक करने का हमारा प्रयास रहेगा
1: जी।
0: इसके बाद हमारा छठवां सप्ताह जो है वो हम मुख्य रूप से शासकीय क्षेत्र की संस्थाओं को टारगेट करेंगे
1: जी।
0: आप और हम सब शासकीय सेवक हैं, ये लोग भी साइबर क्राइम से अछूते नहीं हैं
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें हमारा उद्देश्य है जो हमारे शासकीय प्रतिष्ठान है, चाहे वो कोर्ट रूम हो, चाहे वो शासकीय कोई ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, ऐसी जगहों पर जाकर के हम जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी है उनको साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे और उनको जागरूक करेंगे
1: जी।
0: इसके बाद जो हमारा आखिरी सप्ताह है, सातवां सप्ताह, इसको हमने साइबर चौपाल का नाम दिया है। हम ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में जा करके ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड और अन्य जो सामान्य ठगी के मामले हैं जिसमें सामान्य लोग दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं, इसके बारे में जाकर के हम जागरूक करेंगे
1: जी। बहुत ही व्यापक यह अभियान चलाया जा रहा है, जैसा भी आपने जानकारी दी है, बहुत अलग अलग वर्गों पर फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित जो है वो मानव संसाधन की आवश्यकता होती है जो लोगों को बताए। तो ये किस तरह से संचालित किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: इसके लिए हमने एक राज्य स्तर पर एक टीम बनाई है
1: जी,
0: और सारी गाइडलाइंस हमने हमारे जो 33 जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षकों को जारी की है
1: जी।
0: इस अभियान की जानकारी देने के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, आम जन को बताया गया है किन किन क्षेत्रों में चलेगा, इसकी जानकारी दी गई है
1: जी।
0: और ये पूरे का पूरा कार्यक्रम जो है हमारे जिलों से संचालित होगा
1: जी।
0: हम जो राज्य स्तर पर टीम है वो इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे और हमारा जो थाना लेवल का अधिकारी और कर्मचारी है वो फील्ड में उतरकर मैदानी अमले के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेगा
1: जी। बहुत अच्छी बात है रोहित जी, जैसे आपने बताया कि थाने स्तर पर जो है वो अधिकारी और कर्मचारी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो उनको भी इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरह से उन्हें जागरूक करना है।
0: देखिए, साइबर क्राइम ये तो जब से मोबाइल फोन आया है, इंटरनेट की दुनिया ये तब से शुरू हुई है और ये नित परिवर्तित हो रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम का जो सबसे बेसिक अपराध है उस पे फोकस करना, तो हमारे जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी है उनको इस बारे में भली भांति जानकारी है और निश्चित तौर पे

0: यह अभियान उनके सक्रिय योगदान से सफल होगा।
1: बिल्कुल सही बात। ये आपने कहा कि जो बेसिक तरह के जो साइबर अपराध होते हैं, जो ज्यादातर होते हैं, तो उनके बारे में आपने अभी जिक्र किया है। किस तरह के मामले साइबर ठगी के छत्तीसगढ़ में आमतौर पर सामने आते हैं, ये बताएं।
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है ओटीपी फ्रॉड। जाने अनजाने आपसे ओटीपी मांगता है, आपने ओटीपी दिया और एक आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया
1: जी
0: अपराधी के पास। इसके अलावा दूसरा तरीका है फर्जी कॉल। आपको फोन कॉल आएगा और ये बोला जाएगा कि मैं किसी पुलिस अधिकारी के रूप में बात करेगा कि आपका जो कोई परिचित है वो किसी समस्या में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी अन्य प्रकार की समस्या में है, ताकि आप अधीर हो जाएं और उसमें आप निर्णय लेने की स्थिति में ना रहें।
1: जिसको पैनिक होना कहते हैं।
0: यस, और उस अनिर्णय की स्थिति का फायदा उठाकर जो
1: जी
0: अपराधी है वो आपसे पैसे अपने अकाउंट में ले लेगा और इस प्रकार से आपसे ठगी हो जाएगी।
1: जी
0: कई बार जैसे नौकरी के नाम पर फर्जी
1: पत्र
0: अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड कर दिया जाता है और
1: जी
0: उसके नाम पे ठगी हो जाती है।
1: जी
0: इंश्योरेंस के नाम पे कई बार ठगी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई इंश्योरेंस आपने कराया है,
1: जी
0: किसी कारणवश आपने क्या किया, एक आध साल का आपका प्रीमियम ब्रेक हो गया,
1: जी
0: तो वो आपको फोन करेंगे कि आपका प्रीमियम एक साल के लिए ब्रेक हो गया है, अब हम
1: जी
0: आपको ऑफर दे रहे हैं कि
1: जी
0: आपको 30% कम प्रीमियम देना पड़ेगा।
1: जी
0: तो सामान्य तौर पर व्यक्ति ये समझता है कि ये एक ऑफर है, तो वो उस पे आगे इनिशिएट करता है, वो एक लिंक भेजता है। आज के समय पे मुझे लगता है कि 90% जो ट्रांजेक्शन है वो लिंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, इन्हीं माध्यमों से हो रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: उसका फायदा वो उठाता है, वो एक लिंक भेजता है और उस लिंक पे आपको कहता है कि इस लिंक पे आपको पे करना है,
1: जी
0: और आप पे करते हैं। आप ये वेरीफाई नहीं करते कि सही जगह पैसा जा रहा है कि नहीं, और वो बात भी उसी तरीके से करता है कि वो उसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है।
1: जी जी
0: तो पैसा किसके पास गया? ठग के पास,
1: जी
0: और आप ठगी के शिकार हो गए।
1: मतलब आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि या तो जो ठग लोग हैं व्यक्ति के डर का फायदा उठाते हैं, या फिर उनके लालच का,
0: निश्चित तौर पे दूसरा विषय जो है वो ज्यादा
1: लालच वाला।
0: लालच वाला जो
1: जी
0: विषय है वो ज्यादा प्रभावी है।
1: जी अच्छा रोहित जी, क्योंकि आपका बड़ा अनुभव है, कई मामलों को आपने देखा होगा, डील किया होगा, लोगों को आप आसान भाषा में क्या सलाह देना चाहेंगे कि मूल रूप से वो क्या सावधानियां बरतें, किन किन चीजों का बुनियादी रूप से ख्याल रखें कि वो साइबर ठगी से बचें।
0: इसमें मैं तीन मूल मंत्र देना चाहूंगा।
1: जी
0: कभी भी ओटीपी किसी को नहीं बताना है।
1: अच्छा
0: ओटीपी आप अपने परिवार के किसी जन को भी ना बताएं।
1: जी
0: दूसरी बात मैं कहूंगा कि कभी भी आप कोई भी किसी भी साइट पर जाते हैं तो क्लिक करने के पहले एक बार सोच लें कि आप किस चीज पर क्लिक कर रहे हैं।
1: जी
0: तो मैं उसको बोलता हूं थिंक बिफोर क्लिक।
1: ओके
0: और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, किसी भी अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को न उठाएं।
1: जी
0: ये जो तीन बातें हैं इसको आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए।
1: जी एक बात और रोहित जी, इस कार्यक्रम के अब अंतिम चरण में हम लोग हैं, ये बताइए कि आजकल लोगों की निर्भरता अपने मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा हो गई है, वही सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो डिजिटल लेन देन की बात हो, बात करने की बात हो, व्हाट्सएप कॉल की बात हो, जो भी हो। तो मोबाइल फोन यदि किसी का गुम जाता है या चोरी हो जाता है, ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए, और जब मोबाइल फोन है मान लीजिए कि कुछ अनहोनी हो जाए, तो किस तरह की जानकारियां लोगों को पहले रख लेनी चाहिए कि जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो क्या जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी उनके मोबाइल फोन से संबंधित, और गुमने की स्थिति में सबसे पहला कदम व्यक्ति को क्या उठाना चाहिए।
0: देखिए, आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है
1: जी
0: वो आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए। जब भी
1: जी
0: आप रिपोर्ट कराने जाएंगे
1: जी
0: तो वो पुलिस आपसे मांगेगी,
1: जी
0: क्योंकि वो आपके डिवाइस का यूनिक नंबर है। दूसरी बात, कभी भी अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ या गुम हुआ,
1: जी
0: सबसे पहले अपना सिम ब्लॉक करा लीजिए।
1: अच्छा जो सिम वाली कंपनी है टेलीकॉम की, उससे संपर्क
0: हाँ,
1: करके।
0: उससे संपर्क करके अपना सिम ब्लॉक कराएं।
1: जी
0: इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड होंगे
1: जी
0: वो ओटीपी बेस्ड होते हैं मैक्सिमम,
1: बिल्कुल
0: तो वो आपके सिम से कनेक्टेड है।
1: जी
0: तो जो ठग है वो इसी का फायदा उठाता है, वो आपका मोबाइल चुराया, सिम निकाला, किसी दूसरे फोन में डाला, चालू किया
1: जी
0: और ट्रांजेक्शन शुरू होगा तो ओटीपी उस पे जाएगा।
1: जी
0: तो इसलिए सबसे पहले मोबाइल गुम हो या चोरी हो तो पहले सिम ब्लॉक करा दीजिए
1: जी
0: और तुरंत पुलिस के पास जाइए।
1: और इसके अलावा बैंक वैंक से भी संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है क्या?
0: एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट है। अगर
1: अच्छा
0: मान लीजिए आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया
1: जी
0: जिसमें आप के मतलब खाते से कुछ पैसा निकल गया है
1: जी,
0: ऐसी स्थिति में 1930 नंबर है एक,
1: अच्छा,
0: भारत सरकार ने जारी किया है, इस नंबर पे कॉल करें तुरंत।

0: तुरंत
1: जी
0: और तुरंत कॉल करके अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं।
1: जी
0: होता कैसे है, आपके साथ मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ
1: जी,
0: तो पैसा किसी न किसी अकाउंट में जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में।
1: जी
0: तो ये जो गोल्डन आवर का रूल ये है कि आप जितनी जल्दी 1930 पे कॉल करेंगे,
1: जी
0: 1930 के माध्यम से जो पैसे के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर है उसको रोका जाता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए अगर किसी प्रकार का यूपीआई फ्रॉड होता है या किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन का फ्रॉड होता है, तत्काल 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: अब इस कार्यक्रम के अंत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम के विरुद्ध जागृत करने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है।
1: जी,
0: मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस अभियान की जो मुख्य थीम है साइबर जागृति की एक सेल्फी, सभी लोग इस अभियान से जुड़े, साइबर जागृति की एक सेल्फी लें और अधिक से अधिक लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। आप स्वयं जागरूक हों और अगर आपने अपने किसी पड़ोसी को, किसी भाई को, किसी अन्य दोस्त को जागरूक किया तो ये एक चेन रिएक्शन बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी और एक से एक मिलकर हम 11 होंगे और हम छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के मामले को बहुत हद तक रोक पाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, वाकई बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि लोग साइबर ठगी से बचते हैं तो वाकई ये आज की चर्चा बहुत सार्थक साबित होगी हम सबके लिए। और आपका जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ पुलिस का जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश को साइबर ठगी से मुक्त बनाना, उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो एक बार पुनः आपका आकाशवाणी समाचार की ओर से हार्दिक आभार।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा एक कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है। नमस्कार।
2: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे विकल्प रंजन शुक्ला।
3: कार्यक्रम बातों बातों में अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। टिश्क्याओं इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीतबद्ध किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

तेजस फिल्म से गीत सुन रहे थे आप श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में। कुमार के बोल थे शाश्वत सचदेव का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यही समाप्त करने की दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रवींद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: तो आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना, कि अब भी मैंने क्या कहा था, तू कहां थी अब तक?
1: घर पर ही थी, और कहां थी?
2: नेमरा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे, मुझे लड़ोगे?
4: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ हाँ।

सुलक्षणा चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम झोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझ सा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात

0: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
0: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले ले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने भाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहाँ पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहाँ पर, और मस्ती मजाक भी करते थे वो, मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुटी बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

फिल्म मंजली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले समारोह में चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार के लिए कुल 82 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को चुना गया है। इनमें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री तथा खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच अब तक छत्तीसगढ़ के 9 नागरिकों की जानकारी सामने आई है। इनमें रायपुर निवासी 5 सुरक्षित हैं और वापस लौट रहे हैं, जबकि 2 नागरिकों के परिजनों से संपर्क हो गया है। लापता नागरिकों की तलाश के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। राज्य सरकार, नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है तथा प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को समाज शास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषयों की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद तीनों परीक्षाएं इस वर्ष सितंबर में फिर से आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और

0: से लगे जिलों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा निर्मित है। इसके असर से प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित सप्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में आज से प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम अमराई, और पहला लोकगीत इंदिरा चंद्राकर और शांति यादव के युगल स्वरों में।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नए तराने। पहला तराना फिल्म पैडमैन से। अरिजीत सिंह ने गाया है, कौसर मुनीर ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया है।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गाना फिल्म गदर 2 से विशाल मिश्रा और नीति मोहन ने गाया है, सायरा ताहिर और मिथुन ने लिखा है और मिथुन ने ही धुन बनाई है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: ट्रैफिक अपडेट से बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को उमा शंकर पांडे का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ परंपरा के अनुसार आज जिले में भोजली विसर्जन का आयोजन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जगह जगह अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे रप्टा चौक में भोजली प्रतियोगिता एवं भोजली विसर्जन का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शामिल होंगे। इसी प्रकार आज ही माँ बिलासा लोक कला एवं संस्कृति कला मंच पचे घाट जूना बिलासपुर के तत्वाधान में दोपहर 3 बजे भोजली प्रतियोगिता एवं भोजली विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं तोरवा क्षेत्र में भी अरपा तट पर भोजली विसर्जन का विशाल आयोजन किया गया है। भोजली हमेशा ही छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय परंपरा रही है, लिहाजा इन आयोजनों में जन प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आम जनों से अनुरोध है, चूंकि यह वर्षा की ऋतु है, सभी जलाशयों में बहुत अधिक पानी है, अतः आप स्वयं एवं साथ है बच्चों तथा वृद्धों का ध्यान रखें, घाट से सर्वथा दूर ही रहें। आसपास की सड़कों में इस प्रकार चलें कि आम यातायात बाधित न हो। साथ ही यहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालक अपने वाहनों की गति कम रखें, विशेष सावधानी के साथ चलें। मित्रों, आज ही झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शहर में एक शोभा यात्रा निकाले जाने की योजना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शोभा यात्रा आज दोपहर 2:30 बजे हेमूनगर से निकलकर गुरु नानक चौक, दयालबंद, जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, देवी नंदन चौक, राम सेतु, मामाया चौक, नेहरू चौक, जराभाटा होते हुए सिंधी कॉलोनी पहुंचकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के व्यवस्थापक एवं इसमें चल रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, सड़क के एक किनारे चलें, कतार में चलें, शोभा यात्रा के मार्ग में फटाके न फोड़े। इस बीच यदि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन आए तो उन्हें तत्काल साइड देवे। साथियों, जब भी आप सड़क में किसी वाहन के साथ हैं, वाहन चलाते समय किसी भी काम के आ जाने पर अपना वाहन एकाएक बीच सड़क में न रोकें, ये घातक हो सकता है। सड़क से नीचे उतारकर वाहन खड़ा कर ही काम करें। हमेशा

0: तहत नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट के बाद बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं तू झूठी मैं मकार फिल्म का गाना। आवाज अरिजीत सिंह की है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: आज ये कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

बायसो में अभी आपने सुना 3-2 फिल्म का गीत, लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई थी सचिन जिगर ने। अगला तराना फिल्म एनिमल से।

सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गाना भी आपने सुना। श्रेयस पुराणिक ने धुन बनाई थी और अरिजीत सिंह ने गाया था। एनिमल फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने वाले हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सृजन भारती के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की सृजन भारती गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है। सृजन भारती के इस आयोजन में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने माने फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज जी और गायिका दीपाली सहाय को। इन दोनों अतिथियों का विविध भारती परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख संतोष जाधव जी ने और इंजीनियरिंग हेड सोपान ताइडे जी ने। एडीपी अनुश्री पाठक और एडीपी तेजश्री कांबले और प्रोड्यूसर जुबैर खान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। संचालन आपकी इस रेडियो सखी ममता ने किया। तो अब माइक उद्घोषक यूनुस खान को सौंप रही हूँ। शैलेंद्र के गीतों और जीवन की अनमोल कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यूनुस खान। तो आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का।
1: इस बार सृजन भारती करने की वजह यह है कि 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतकारी पर बहुत गहरा असर डाला है। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र का जन्म हुआ था और बहुत छोटी जिंदगी शैलेंद्र को मिली। 30 अगस्त 1923 से 14 दिसंबर 1966 तक। 14 दिसंबर जिस दिन शैलेंद्र इस दुनिया से गए वो राज कपूर का जन्मदिन होता है और राज कपूर अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे तब ये खबर आई कि शैलेंद्र नहीं रहे हैं। ये राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जरा ये देखिए कि तकरीबन उनकी जो जिंदगी थी वो 43 साल की जिंदगी थी और इन 43 साल में जो गीत यात्रा थी वो 1949 से 1966 तक, यानी तकरीबन 17 साल की। लेकिन इतने सारे गाने शैलेंद्र और इतने बेमिसाल गाने शैलेंद्र हमें दे गए हैं कि ये लगता है कि शैलेंद्र ने बहुत लंबी जिंदगी जी। वो जो आनंद का डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, मुझे लगता है ये शैलेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। 17 साल में इतने गाने और इतने अनमोल गाने, इतने कल्ट गाने, ऐसे गाने जिनमें कहीं अपने समाज की झलक दिखती है, कहीं राजनीति की झलक दिखती है, रोमांस है, दर्शन है, जीवन का फलसफा है, सुख दुख हास्य, कौन सा ऐसा विषय है जो शैलेंद्र के गानों में नहीं है। मुझे लगता है कि 43 साल कितना छोटा समय होता है एक व्यक्ति के लिए। तकरीबन 40 की उम्र में तो इंसान समझदार बनना शुरू होता है, उसे जिंदगी की समझ आती है और तब तक शैलेंद्र निकल लिए। ये जो एक घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में आप ये पाएंगे कि कितना बड़ा गीतकार था ये बंदा। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र पैदा हुए और तकरीबन 40 के दशक की बात है। राज कपूर ने शैलेंद्र को एक कवि सम्मेलन में सुना था और इस कवि सम्मेलन में शैलेंद्र अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब। और रेलवे में वो मैकेनिक थे और झांसी में उनकी नौकरी लगी थी और मुंबई उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई आने के बाद वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और उसके अलावा मुंबई कॉयर ऑर्केस्ट्रा, जहां सलील चौधरी हुआ करते थे, तो वो जो पूरी प्रोग्रेसिव दुनिया है उसमें बहुत एक्टिव थे। इप्टा में बहुत ही एक्टिव थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और उनके जनगीत बहुत शानदार तरीके से वहां गाए जाते थे। आपको याद होगा कि सलील चौधरी ने उनका एक जनगीत कंपोज किया था उसी जमाने में जो बॉम्बे कॉयर गाया करता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये ऐसा गीत है जो जोश ला देता है और इप्टा में ये गाना पूरे देश में खूब गाया जाता है। और इसके अलावा हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी शैलेंद्र की रचना है। अब हुआ यूं कि राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि आपको आग के गाने लिखने हैं और शैलेंद्र ने पूरी तरह से ठुकरा दिया कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। फिल्मों में लिखने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया।

शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और झांसी में वो मौजूद थी और उन तक भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी देखभाल के पैसे नहीं थे और बहुत जरूरी तौर पर उन्हें पैसे भेजने थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पैसे कहां से जुटाए जाएं, तो वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 500 रुपए चाहिए। राज कपूर के ऑफिस में उस वक्त 500 रुपए थे नहीं, उन्होंने घर से मंगाए और शैलेंद्र को 500 रुपए दिए, लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़े दिन बाद कहीं से पैसे आए, शैलेंद्र वो पैसे लौटाने के लिए गए, तब राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे कोई सूदखोर महाजन समझ रखा है कि जब चाहे तुम मुझसे उधार ले लोगे और जब चाहे वापस कर दोगे, तुम्हें मेरे लिए गाने लिखने ही पड़ेंगे। तब राज कपूर के जोर देने पर शैलेंद्र ने बरसात के दो गाने लिखे, एक तो बरसात का टाइटल गीत। और यहां एक बहुत जरूरी बात यह कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी जब मायके में थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। शैलेंद्र ने शकुंतला जी की चिट्ठी में लिखी हुई इस लाइन को एक गाने में बदल दिया। ये गाना सुनते हैं।

बरसात में उन्होंने जो दूसरा गाना लिखा वो था पतली कमर है तिरछी नजर है, वहां वो लिखते हैं मौसम के साथ जो बदलता जाए, आदमी वही है जो चलता जाए, एक तरह से वो उस जमाने का आइटम सॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी वो जिंदगी का एक फलसफा देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 1953 में 2 बीघा जमीन बन रही थी, बिमल रॉय प्रोडक्शन एक तरह से अपनी शुरुआत कर रहा था बॉम्बे में। बिमल रॉय अपने सारे साथियों के साथ जब वहां आए थे, उन्होंने बॉम्बे में बाइसाइकिल थीफ देखी, फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल था वहां पर उन्होंने देखी, तो बस से वो लौट रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें सलील चौधरी थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, नवेंदु घोष थे, और बिमल रॉय ने कहा कि हमारे देश में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और इस तरह से सलील चौधरी की कहानी पर 2 बीघा जमीन फिल्म बनी, और उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी, और इस फिल्म में शैलेंद्र ने एक बहुत ही बेमिसाल गाना लिखा था जो उम्मीद का गाना है। ये गाना कहता है, तेरी राह में कलियों ने नैन बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, नीला अंबर मुस्काए हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले भाई। ये शैलेंद्र थे।

दो बीघा जमीन का ये गाना कितना कल्ट गाना है ये आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र की असली यात्रा जो शुरू होती है राज कपूर के साथ, वो आवारा के साथ शुरू होती है। एक दिन ये हुआ कि शैलेंद्र अपने रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तब राज कपूर की गाड़ी आई और राज कपूर लगभग उन्हें घसीटते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर ले गए, और ख्वाजा अहमद

दास ने तकरीबन 2.5 घंटे का नरेशन किया और 2.5 घंटे का एक फिल्म का नरेशन करने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि कविराज क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइन में ये जो 2.5 घंटे का नरेशन है उसको पिरो दिया। उन्होंने कहा, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। इतने तपाक से उन्होंने ये बोला, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। राज कपूर क्यों शैलेंद्र को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी वजहें थी कि इतने कमाल के गाने और ऐसे फलसफा अपने गाने में उतार देना। ये शैलेंद्र भले फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भीतर जो गीतकार था वो बहुत ही कमाल का गीतकार था। और जब वो सिनेमा में आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए। ये गाना सुनते हैं।

जो आवारा का गाना है ये चाइना, टर्की, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि जापान और तमाम देशों में ये गाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और अभी तो साउथ कोरिया से भी इस गाने के वीडियोज आ रहे हैं जहां पर इस गाने को सब लोग गाते हैं। उज्बेकिस्तान के एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं बोबू मुरोव हमदानोव राज कपूर के गाने गाते रहे हैं और उज्बेक सिंगर थे, लेकिन वो जिस अंदाज में गाते हैं, अब सोचिए कि इन लोगों की भाषा नहीं है ये, लेकिन जिस अंदाज में, जिस खुशी के साथ, जिस जोश के साथ गा रहे हैं। बोबू मुरोव के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवारा का वीडियो ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आवारा के बाद श्री 420 आती है और श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी की सबसे ज्यादा नायाब फिल्मों में से एक है। श्री 420 का जो सबसे मशहूर गाना है वो है मेरा जूता है जापानी। 1955 का जमाना था, भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था और भारत एक तरह से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन रईस लोगों में चलन ये था कि जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी रूसी। तो शैलेंद्र ने इस पर एक तंज मारा था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो बाहर का सामान इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे थे। तो अमूमन हम इस गाने को तंज के रूप में नहीं देखते, लेकिन ये बाकायदा एक तंज है। और इस गाने में जो सबसे दिलचस्प अंतरा है वो है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। यानी ये वो देश है जहां एक आम आदमी भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है।

इस गाने में एक और बहुत ही शानदार लाइन शैलेंद्र लिखते हैं कि बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। इतनी आम भाषा में शैलेंद्र ऐसा फलसफा दे जाएंगे, ये उनकी कलाबाजी है जो वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिर्फ राज कपूर के लिए ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, देव आनंद के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। और यहाँ जो गाना अब मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये गाना देखने का गाना ज्यादा है। इस गाने में शैलेंद्र अन्योक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान।

है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। ये गाना पूरी तरह से ऊपर वाले के लिए लिखा गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात कही जा रही है, पर सुनने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऊपर वाले की नहीं, ऊपर वाली की बात हो रही है। ये गाना दिखाइए।

जरा सोचिए कि माँ बाप को वो वहीदा रहमान ये बता रही है कि ऊपर वाले की बात कर रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है। तो ये कितना कमाल है। अमूमन हम सुन लेते हैं गाना, लेकिन सिचुएशन पर इस तरह से लिखना और वो भी धुन पर लिखना, ये बहुत नायाब गाना है, बहुत अद्भुत गाना है। अमूमन हमारा ध्यान नहीं होता इस बात पर। अब एक गाने की कहानी। एक बार ये हुआ कि एस डी वर्मन ने शैलेंद्र को एक सिचुएशन दी और कहा कि इस पर तुमको गाना लिखना है। अब काफी टाइम हो गया शैलेंद्र ने गाना लिखा ही नहीं, तो एस डी वर्मन को गुस्सा आया। उन्होंने आर डी वर्मन को भेजा कि जब तक शैलेंद्र गाना ना दे तुम वापस मत लौटना। अब ये हुआ कि शैलेंद्र के पास पंचम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में जा रहा हूं। तो वो पंचम को लेके शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में चले गए। अब वहां पर जयकिशन को ये लगा कि यार ये दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा इधर क्या जासूसी करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा तुम यहां पर क्यों आया भाई। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शैलेंद्र, क्योंकि क्या होता है कि काम चल रहा होता है वो सीक्रेट होता है ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं शैलेंद्र जी गाना नहीं दे रहे हैं तो मैं इसलिए उनके साथ आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो वो मेरा गाना लिख रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। तो जयकिशन थोड़ा भड़क गए थे। शैलेंद्र ने जयकिशन का काम पूरा किया और अब पंचम ने कहा मुझे गाना दीजिए ना, नहीं तो बापू बहुत मारेंगे, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं नेशनल पार्क चलते हैं। तो जुहू से ये लोग गाड़ी से नेशनल पार्क आ गए। शैलेंद्र जो है नेशनल पार्क में इधर उधर टहलते रहे, सिगरेट विगरेट पीते रहे, सोचते रहे, तो बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं एक काम करते हैं कि चलो चलते हैं जुहू बीच की तरफ। तो नेशनल पार्क से वो उनको ले गए जुहू बीच की तरफ। अब पूनम की रात थी, जुहू बीच पर शैलेंद्र बैठे हुए थे और पंचम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है। तो पंचम घबरा गए कि इनको कैसे पता चला कि मैं स्मोक करता हूं। तो उनको लगा ये क्या है। तो उन्होंने माचिस दी और माचिस पर उन्होंने ट्यून बजा के बताई। और जब ट्यून बजा के बताई तो शैलेंद्र ने वहीं जुहू बीच पर पूनम की रात में दो लाइनें लिखी और कहा कि जाओ अंतरे तुमको बाद में मिल जाएंगे। वो दो लाइनें थी, खोया खोया चांद खिला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। अब जरा सोचिए कि खोया खोया चांद तीन ही वर्ड्स हैं, है ना, खुला आसमान दो ही वर्ड्स हैं, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको, मस्ती भरी हवा जो चली, ये जो कमाल है ये। और सिचुएशन जब पता चलती है तो गाना सुनना जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।

0: खोया।
1: तो भाई ये शैलेंद्र के गानों की कहानियां हैं। बम्बई जब शैलेंद्र आए तो वो माटुंगा में वर्कशॉप में काम करते थे और परेल में रेलवे के एक छोटे से दड़बे नुमा क्वार्टर में रहते थे। उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ख्वाब था कि इस बम्बई शहर में अपना एक घर होना चाहिए और अरब सागर के किनारे बसा आसमान छूता शहर बम्बई, और ये शहर जो कि सिकुड़ कर जीता है, कम जगहों में जीने की आदत है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर, पुलों पर, टैक्सी में, मैदानों में, रेलवे स्टेशनों में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाते हैं। शैलेंद्र का ये ख्वाब पूरा हुआ था 1960s के जमाने में, अपना घर बनाने का ख्वाब। 1960

1908 में उन्होंने लिंकिंग रोड बैंड्रा में अपना एक घर बनाया, बंगलो बनाया, वो आज भी मौजूद है। अगर आप लिंकिंग रोड पर जाते हैं तो वहाँ एक शैलेंद्र चौक है, शैलेंद्र चौक वाली गली में अंदर जाएं तो आपको रिमझिम मिलेगा। पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ जाके माथा टेक के आया। रिमझिम वहाँ लिखा है शंकर शैलेंद्र और लिखा है रिमझिम। रिमझिम इसलिए क्योंकि बारिश ने उनका करियर बनाया, बरसात फिल्म ने, और बारिश उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले का नाम रिमझिम रखा हुआ है। बहुत जर्जर हालत में मौजूद है, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत बेमिसाल जगह है। इसके अलावा शैलेंद्र ने अपने काम करने के लिए सांताक्रूज में एक फ्लैट और लिया था जिसको बापू निवास कहा जाता था। ये जो बापू निवासी, ये बड़ी करामाती जगह थी क्योंकि यहाँ एक तरफ गुलजार मौजूद होते थे, दूसरी तरफ देबू मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, मतलब ये एक तरह से घेटो था। और गुलजार साहब ने कहीं लिखा है कि बापू निवास जाओ तो पता चलता है कि कोने में बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के टोटे हैं, अंडरवियर्स और टॉवल्स सूख रही हैं। हर आदमी वहां जा सकता है, हर आदमी वहां रह सकता है और किसी के आने पर कोई रोक नहीं है। इतनी भगदड़ के बीच थोड़ी देर वक्त निकाल के शैलेंद्र अपने गाने वहां पर लिखा करते थे। बापू निवास में शैलेंद्र ने अपने बहुत सारे गाने लिखे हैं। ये जगह आज भी मौजूद है, हालांकि अब ये शैलेंद्र के पास नहीं है। एक कमरा, किचन और बरामदे वाला ये घर बापू निवास। घर का जो ख्वाब है उस पर शैलेंद्र ने एक बहुत ही क्यूट और स्वीट गाना लिखा है, वो सुनते हैं।

गाना जो है हम सबके ख्वाबों का गाना है, घर के ख्वाब का गाना है। शैलेंद्र का एक और रंग आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं। 1960 में एक फिल्म आई थी, बप्पी सोनी की फिल्म थी, एक फूल चार कांटे, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान थे। इसका जो बहुत ही मशहूर गाना है वो है मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, वो भी शैलेंद्र ने लिखा है। लेकिन इस फिल्म में एक सरप्राइज गीत था, एक सिचुएशन ऐसी आई जहां शैलेंद्र से कहा गया कि आपको पूरी तरह से अंग्रेजी गाना लिखना है। उस जमाने में बॉम्बे में रॉक एंड रोल और जैज का बहुत चलन था, और साउथ बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जहां जैज हुआ करता था, लाइव जैज हुआ करता था। तो एक नेवी में काम करने वाले व्यक्ति होते थे सरदार जी, उनका नाम था इकबाल सिंह सेठी। इकबाल सिंह ब्रिटिश इंडियन नेवी में काम करते थे, और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें गोरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को एल्विस पसंद था, तो उन्होंने एल्विस को अपना लिया और एल्विस की स्टाइल में गाना गाने लगे। जब इकबाल सिंह सेठी को शैलेंद्र का लिखा अंग्रेजी गाना गाने को कहा गया, उन्होंने गा लिया, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी की इजाजत तो थी नहीं, तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा कि भाई आपने ऐसे बिना इजाजत के फिल्म में काम कैसे कर लिया। लेकिन ये जो गाना है ये है ओ ब्यूटीफुल बेब ऑफ ब्रॉडवे, रॉक इन राइट ओवर माय हार्ट, यू हैव सेट मी अ फायर एनीवे, यू आर टू गुड इन योर आर्ट। ये शैलेंद्र ने अंग्रेजी गाना लिखा है।

ये अंग्रेजी गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ, शैलेंद्र ने बहुत मजा किया, गाने भी लिखे हैं और ये अंग्रेजी गाना भी उनका एक कमाल है। बल्कि एक गाना है अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, उसमें वो अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। वो गाना आज मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, पर उसको आप कभी सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, इन तमाम भाषाओं के सेंटेंसेस आते हैं। एक बार ये हुआ कि शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का अपना आपस में एक वादा था कि हम साथ काम करेंगे, हमेशा एक साथ काम करेंगे, जब भी हमें कोई फिल्में मिलेंगी तो गाने आप लिखोगे और ये एक हमारी टोली जो है हम उसको हमेशा निभाएंगे। लेकिन एक फिल्म आई कॉलेज गर्ल, जिसमें पता नहीं क्या वजह थी कि शैलेंद्र की बजाय शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कृष्ण को साइन कर लिया। अब शैलेंद्र बहुत गुस्सा हुए कि भाई ये वादा खिलाफी हो गई और मेरी बजाय किसी और से लिखवा लिया, तो वो बहुत नाराज हो गए। और एक रेस्टोरेंट में उन्होंने देखा कि शंकर जयकिशन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, और बैरे से कहा कि जाओ उसको दे आओ। तो ये नाराजगी थी और शंकर जयकिशन ने इसे एक गाने में बदल

0: दुनिया।
1: और अब शैलेंद्र और नवकेतन की सबसे बड़ी फिल्म गाइड की बात करते हैं। गाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब गाइड फिल्म बन रही थी तो उसके लिए गीतकार के तौर पर हसरत जयपुरी को चुना गया था, और हसरत जयपुरी ने एक दो गाने लिखे भी थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोल दिया था इस फिल्म के हीरो के बारे में जिसका यहाँ जिक्र करना या उसे बोलना बहुत अशालीनता हो जाएगी, तो उनको फिल्म से निकाल बाहर कर दिया गया था। और शैलेंद्र जी के पास गए थे विजय आनंद और देवानंद, और उन्होंने कहा कि आपको गाइड फिल्म के गाने लिखने, तो उन्होंने कहा सिंस आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस मैं डबल पैसे लूंगा, और उन्होंने डबल फीस चार्ज की थी। लेकिन गाइड के जो गाने उन्होंने लिखे हैं, एक एक गाना इतना कमाल है। सबसे पहले मैं मुसाफिर जाएगा कहां की बात करना चाहता हूं। अगर आपने गाइड फिल्म देखी हो तो इंटरमिशन के भी एक घंटे बाद एक दृश्य आता है जहां रोजी जेल में राजू बंद है और उससे मिलने जाती है, और वहां वो ये कहती है कि राजू तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा, काश मैं तुमको बचा पाती, और कोई बात नहीं ये वक्त बीत जाएगा और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तो राजू जेल की सलाखों को पकड़ता है और कहता है हाँ रोजी नए सिरे से शुरू करेंगे जीवन। मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से शैलेंद्र ने इस गाने को उगाया था, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। मुझे ये लगता है कि वहीं राजू ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना है, उसे ना तो रोजी के पास लौटना है, ना अपने घर, अपने गांव, अपनी माँ के पास लौटना है। और जब वो जेल से छूटता है, और उसके बाद अगर आप इस गाने को देखें, गाइड फिल्म शुरू इस गाने से होती है, और जब आप देखें तो सबसे पहले राजू का सूटकेस गिरता है, रोजी की तस्वीरें गिरती हैं, उसके सूटकेस छूट जाता है, उसके बाद चप्पल छूट जाती है, उसके बाद कपड़े छूट जाते हैं, फिर वो कभी किसी बस में लटक के जाता है, कभी किसी ट्रक पर जाता है, और फिर एक जगह थक के लेटा हुआ होता है और एक साधु उसको रामनामी चादर ओढ़ा देता है, और वहां से वो साधु मान लिया जाता है, और फिर जो गाइड का कंफ्लिक्ट है वो शुरू होता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि एस डी बर्मन ने एक बांग्ला गाना बनाया था, दूर कौन पारो बाशे तुम्ही चोलो जाइबारे कोबे आईबारे। ये जो गाना है इसको यूट्यूब पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। इसी ट्यून पर मुसाफिर जाएगा कहां बनाया गया था। और अगर आप रिकॉर्ड पर गाना सुनते हैं तो एक अंतरा अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन वो वर्जन मौजूद है और ढूंढने पर वो मिल जाएगा, जिसको जावेद साहब कहते हैं कि शैलेंद्र का लिखा सबसे नायाब अंतरा है इस गाने का। वो है तूने तो सबको राह बताई तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां, क्यों नाचे सपेरा, क्या जुमला है, देखिए आप क्या शानदार जुमला है, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां। ये गाना जिंदगी की क्षणभंगुरता, रिश्तों के खोखलेपन, समाज और संसार की सच्चाइयों को उजागर करता है। इसका एक अंश सुनते हैं।

गाना और अब गाइड के और भी दूसरे गानों की बात करना चाहते हैं। गाइड फिल्म एक महिला की आजादी और अपनी जिंदगी को चुनने वाली फिल्म है, और अमूमन क्या होता है कि फिल्मी गानों में पहले मुखड़ा आता है और उसके बाद फिर अंतरा आता है, लेकिन गाइड का एक गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने में पहले अंतरा आता है और बाद में मुखड़ा आता है, ये प्रयोग शैलेंद्र ने किया था। और हुआ ये था कि देवानंद शूटिंग के लिए जयपुर चले गए और उन्होंने एसडी बर्मन से कहा कि गाना जल्दी भेजिएगा, तो एसडी बर्मन ने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा थीम सॉन्ग बनाऊंगा कि लोग याद रखें।

गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन देवानंद इससे खुश नहीं थे, विजय आनंद भी खुश नहीं थे, हालांकि यूनिट के लोग इस गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि चूंकि हम लोग चित्तौड़ आए हुए हैं तो इस गाने को शूट कर लेते हैं, एडिट पे नहीं अच्छा लगा तो उड़ा देंगे। जरा सोचिए कि इस गाने को लगभग उड़ा दिया गया था, लेकिन जब वो गाना शूट हुआ तो यूनिट सुबह शाम गा रही है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, और तब देव को लगा कि ये गाना बहुत कमाल का गाना हो सकता है और उन्होंने इस गाने को रखा फिल्म में। और जिंदगी की उलझनों और जिंदगी की ठोकरों में फंसी एक महिला की आजाद उड़ान का गाना है। इस गाने से पहले के डायलॉग आपको याद है, देव कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की एक औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती हैं 16 साल की एक बच्ची, भोली, नादान, शरारत से भरपूर। और कट, गाना शुरू होता है, वो ट्रक में जा रहे हैं और वो मटका फोड़ती है, और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग ऑफ सिनेमा, कमाल गाना है।

गाइड ऐसी फिल्म है जिसमें दो और भी कमाल के गाने हैं, बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म में आते हैं, मोसे छल किए जा और क्या से क्या हो गया, एक ही ट्यून और दो गाने। एस डी बर्मन ने यह सोचा था कि एक ही ट्यून पर दोनों गाने आएंगे, बैक टू बैक आते हैं। जब वो मोसे छल किए जा होता है और मोसे छल किए जा जैसे खत्म होता है तो वो सलाखें और जाल और देव उस जाल में फंसे हुए हैं और वहां पर क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, एक ही ट्यून पर दोनों गाने हैं और वो भी दोनों गाने बहुत ही कमाल के गाने हैं। लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प किस्सा शैलेंद्र के गानों के बनने का हुआ यह था कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लेख टंडन एक दिन फेमस तारदेव में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, तकरीबन 100 साजिंदे तैयार थे, रिहर्सल हो चुकी थी और लता जी के आते ही गाना रिकॉर्ड हो जाना था। लेकिन तभी स्टूडियो में राज कपूर का फोन बजा और राज कपूर ने जयकिशन को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ कि कविराज ने कौन सा गाना लिखा है। अब ये हुआ कि उन्होंने फोन पर ही पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना सुना, वो गाना था काटे न कटे रहना, और जैसे ही गाना खत्म हुआ उन्होंने कहा ये गाना मुझे दे दो, इस गाने पर मेरा हक है, तुम लोग दूसरा लिख लो। अब गाना नहीं है और लता मंगेशकर आने वाली हैं। अब लेख टंडन की हवाइयां उड़ रही थी कि लता जी आएंगी तो क्या करेंगे। लता जी आई भी और फिर ये कहा गया कि भाई गाना तो था लेकिन अब नहीं है, अब गाना लिखना पड़ेगा। तो लता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे गाने रिकॉर्ड करके आती हूँ, तब तक आप लोग गाना लिख लो। अब ये हुआ कि शैलेंद्र को लेख टंडन लेके गए आरे कॉलोनी, वहां उनको खाना दिया और कहा कि भाई यहाँ लिखो, तो उन्होंने खाना खा लिया लेकिन गाना नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नेशनल पार्क चलते हैं, नेशनल पार्क में घूमे, वहां पर भी गाना नहीं हुआ। अब लेख टंडन को लगा कि आज मर गए, क्योंकि लता जी जब आएंगी और दोबारा गाना नहीं है तो क्या होगा हमारा। तो जब वापस लौटे तो देखा लता जी की कार स्टूडियो के बाहर खड़ी है, तो लेख टंडन कहीं जाके छिप गए। उन्होंने कहा अब तुम ही सामना करो, मैं तो भाई इस मामले में नहीं पड़ूंगा। तो लेख टंडन छुप के देख रहे थे कि स्टूडियो के केबिन में शैलेंद्र लता जी के पास गए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। लेख टंडन को ये लगा कि शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि मेरे से गाना हुआ नहीं और मैं ये गाना बाद में लिख दूंगा और लता जी की डांट खाएंगे। पर जब उन्होंने स्पीकर का PFL दबा के सुना कि अंदर बात क्या हो रही है, तो लता जी की आवाज आई, दो ही अंतरे होंगे ना शैलेंद्र जी, यानी लता जी के सामने बैठ के उन्होंने एक झटके में गाना लिख दिया वहां पर, और ये गाना था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी।

जरा सोचिए कि ये गाना जो शैलेंद्र ने एक झटके में ऐसे लिख दिया जैसे कहीं से याद करके आए हों, इस गाने की जो अंतरे हैं वो क्या कमाल हैं। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, ये एक अंतरा है। दूसरा अंतरा है जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, और ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी गागर में सागर का पानी। इतने जोरदार

किनारा और ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। इतने जोरदार तरीके वाला गाना और ऐसे एक झटके में लिख दिया, ये शैलेंद्र की बहुत बड़ी खासियत है। और जरा सोचिए कि जो पीछे की कहानी है ये इन गानों को ज्यादा नायाब बनाती है, और शैलेंद्र की जो लफ्जों की कारीगरी है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से उभारती है। 1948 में जब राज कपूर आग बना रहे थे तो इंदर राज आनंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम रखा गया था घरौंदा। राज कपूर ने तय किया था कि इसे वो बनाएंगे नरगिस के साथ, लेकिन वो हो नहीं सका। और बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों को ऑफर किया, देवानंद को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। उत्तम कुमार को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। राजेंद्र कुमार राजी हुए, नरगिस की जगह पर वैजयंती माला आई और घरौंदा की बजाय इस फिल्म का नाम रखा गया संगम। संगम राज कपूर की बहुत बड़ी फिल्म, दो इंटरवल वाले इसके वर्जन होते थे। और अभी पीछे जब राज कपूर फेस्टिवल NFAI ने किया था तो दो इंटरवल वाला वर्जन रिलीज किया गया था और वो हमें टॉकीज में देखने मिला था। क्या कमाल की ये फिल्म है। और जरा सोचिए कि इस फिल्म में शैलेंद्र, यहां जो पक्ष है अब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शैलेंद्र के भीतर बैठा एक स्त्री मन। शैलेंद्र एक महिला की व्यथा को बहुत खूबसूरती से गानों में उतारते रहे, और तीन गानों की मैं बात करूंगा जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाते हैं। इस फिल्म में एक गाना है ओ मेरे सनम। ओ मेरे सनम जो है वो एक ऐसा गाना है जो एक स्त्री जिस पर उसके पति को शक है, फिल्म की क्लाइमेक्स में जब ये गाना हो रहा होता है तो ये गाना जैसे अपनी सारी बातें कहता है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम, ओ मेरे सनम। और यहां शैलेंद्र आगे लिखते हैं कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम। ये शैलेंद्र का एक स्त्री मन है।

शैलेंद्र की स्त्री मन की बात हो रही है। कुछ और गानों का जिक्र करते हैं। जागते रहो के एक गाने में वो एक स्त्री की तमन्नाओं को लिखते हैं। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, प्याज खिड़की खुली मत छोड़ो, ये गाना। और दूसरी तरफ एक और गाना है जिसमें कहते हैं कि एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, ये भी कितनी सुंदर लाइन है। और इसी तरह से बंदिनी के एक गाने में वो लिखते हैं कि मैं तो पंछी पिंजरे की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात रे सागर, कैसे चलूं उस पार। ये क्या कमाल का गाना है। ओ पंछी प्यारे सांसकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। पर एक ऐसा गाना है जो इन तमाम गानों पर भारी है और ये फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, जिसका गाना है अजीब दास्तां है ये। इस गाने का बैकग्राउंड ये है कि हीरोइन जो है वो नर्स है मीना कुमारी, और अचानक वो ये पाती हैं कि डॉक्टर साहब कश्मीर गए तो उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है और शादी की पार्टी हो रही है। मीना कुमारी की तो सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और वहां पर वो ये गाना गाती है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म।

ती है, उसकी मृत्यु होने वाली है, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, और पत्नी के दिल के भीतर तूफान मचा हुआ है, और वहां वो गाती है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की रहना। वहां वो जो लाइन जो है, शैलेंद्र ने अल्फाज का खेल किया है, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे, जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। ये शैलेंद्र हैं।

एक और गाना जो शैलेंद्र की स्त्री मन को दिखाता है, और वो गाना है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का गाना। इस फिल्म में ये है कि जो

1964 का फिल्मफेयर अवार्ड समारोह हो रहा था तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड साहिर लुधियानवी को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये अवार्ड उन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया के लिए दिया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि साहिर मंच पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस अवार्ड के सच्चे हकदार शैलेंद्र हैं, जिन्होंने बंदिनी के लिए मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे जैसा गाना लिखा है। और साहिर ने ये कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीत है और ये भी उन्होंने कहा कि शैलेंद्र असली गीतकार हैं, हम सब तो बस शायर हैं। बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी बांग्ला के एक बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं जो जेलर थे, उनका नाम था जरासंघ, और उनकी कहानियां हमेशा कैदियों पर केंद्रित होती थी। बंदिनी भी कैदी की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिससे एक मर्डर हो जाता है, जहर दे देती है वो। तो ये फिल्म थी और इस फिल्म में एस डी बर्मन ने एक बहुत ही सुंदर कजरी बनाई थी, निबुआ तले डोला रख दे मुसाफिर पर अब के बरस भेज भैया को बाबुल। और मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये सभी की आंखों में आंसू ला देता है।

कितना सुंदर गाया दीपाली ने, हर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर। अब हम मधुमति की तरफ बढ़ रहे हैं। मधुमति बिमल रॉय, सलील चौधरी और शैलेंद्र की टीम का एक कमाल थी, और इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे किस्से हैं, जैसे सुहाना सफर और मौसम हसी गाना बन रहा था तो सलीलदा और शैलेंद्र खंडाला घाट पर घूमने चले गए थे। वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए यूं कर रहा था, हुर्र। और आप ये देखिए कि सुहाना सफर गाना इसी तरह से शुरू होता है, उन्होंने ये हुर्र हुर्र जो है उसमें रख लिया था। इसी तरह से आजा रे परदेसी एक और कमाल का गाना है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मतलब शैलेंद्र कैसे छोटी छोटी सूक्तियां दे देते हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये गाना फिल्म जागते रहो के बैकग्राउंड म्यूजिक

0: म्यूजिक में बजी एक ट्यून से आता है, जागते रहो कि बैकग्राउंड में ये ट्यून आती है, और सलिलदा और शैलेंद्र को ये ट्यून बहुत पसंद थी, तो शैलेंद्र के इसरार पर ये गाना मधुमती के लिए बनाया गया था उस ट्यून को लेके। और इस फिल्म का जो सबसे शानदार गाना है वो बिछुआ है। सलील चौधरी ने बचपन में असम में कुलियों को ये गाना गाते हुए सुना था, और जब सलीलदा ने ये धुन शैलेंद्र को सुनाई तो अनायासी शैलेंद्र के मुंह से ये बात निकली, हो बिछुआ। और आप सोचिए कि ये जो गाना है इसमें एक पूरी कहानी है, प्रॉपर एक कहानी आती है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये गाना फोक से आता है, पर सच ये है कि ये शैलेंद्र का रचा हुआ फोक सॉन्ग है। जिस तरह की पैकेजिंग, जिस तरह की इसमें पूरी एक कहानी चलती है, वो बहुत ही कमाल की बात है।
1: मंतर फेरूं

और अब उस फिल्म की बात जो शैलेंद्र ने बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग चल रही थी, और यहां एक और बात बताएं कि परख के सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि डायलॉग भी शैलेंद्र ने लिखे थे, और ये एक इकलौती फिल्म है जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे। बिमल रॉय की यूनिट के तमाम लोग खाली वक्त में गप्पे मारते थे, और इसमें नबिंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, रघुनाथ झालानी वगैरह होते थे। उसी दौर में मोहन राकेश ने एक किताब छापी थी, पांच लंबी कहानियां, जिसमें एक कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनके मन में ये भूत चढ़ गया कि उन्हें तो ये फिल्म बनानी है। राज कपूर ने उन्हें ये समझाया कि देखो कविराज, ये आपके बस का काम नहीं है, फिल्म आप मुझे बनाने दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। पर शैलेंद्र नहीं माने और उन्हें वो फिल्म बनानी ही थी। पर इस फिल्म को बनाने का जो सफर है वो बहुत डिफिकल्ट रहा। जो प्रोडक्शन मैनेजर्स थे उन्होंने बहुत स्कैम किया और अनायास बिना बात के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। फिल्म बनने में बहुत देर हुई, ओवर बजट हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए। कहते ये हैं कि शैलेंद्र का बहुत दिल टूट गया था इस फिल्म को बना के। हालांकि उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था, और उनकी बेटी से जब मैंने ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र रिकवरी वो 2 साल में आराम से कर लेते, जो फीस वो लेते थे वो बहुत शानदार थी, तो वो जो भरपाई नुकसान की थी वो 1-2 साल में कर लेते, लेकिन तब तक उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। तीसरी कसम के लिए उन्होंने एक बेमिसाल गाना लिखा था, उसको सुनते हैं।

गाइड के बाद जब ज्वेल थीफ बनाने की बारी आई थी तो ये तय हो गया था कि चूंकि गाइड में इतने अच्छे गाने लिखे हैं तो शैलेंद्र ही गाने लिखेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, शैलेंद्र तीसरी कसम बनाने के बाद डीप डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। विजय आनंद जब मिलने आते तो शैलेंद्र ये कहलवा देते कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन विजय आनंद ने एक ट्रिक सोची। उन्होंने लिंकिंग रोड पर गाड़ी बाहरी

छुड़दी पैदल आए, बेल बजाई और लगभग गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और कहा कि आप ये बताओ कि आप गाना क्यों नहीं लिख रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखो अब मेरा हौसला नहीं रहा है और मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिख पाऊंगा। एक ही गाना उन्होंने इस फिल्म का लिखा और उसके बाद बाकी गानों के लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम दिया और मजरूह सुल्तानपुरी ने बाकी गाने लिखे। लेकिन ये जो गाना है रुला के गया सपना मेरा, ये असल में शैलेंद्र ने हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये उनकी अपनी जिंदगी की निराशा की कहानी है। कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, हाय कि दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। इसको अगर आप शैलेंद्र पर फोकस करके देखें तो आपको लगेगा कि उनके दिल में यही चल रहा था और वो बहुत निराश थे और ये गाना उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये अपने लिए ज्यादा लिखा था उन्होंने।

0: ये शैलेंद्र का लिखा आखिरी गाना था और ये वो दौर था जब शैलेंद्र की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी और 14 दिसंबर 1966 को जब शैलेंद्र को एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो राज कपूर के घर के सामने से गुजरे और राज कपूर ने उन्हें आखिरी बार देखा और ये कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे कविराज और हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन 14 दिसंबर को शैलेंद्र ने अलविदा कह दिया। राज कपूर के जो बहुत ही अजीज लोग हैं वो इसी तरह से छूटते चले गए थे, जैसे मुकेश गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ चली गई, कविराज शैलेंद्र गए तो वो बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे। केवल 43 बरस की जिंदगी, 17 साल का करियर और ये तो एक घंटे का प्रोग्राम है, पर अमूमन मैं शैलेंद्र के गानों की जो कहानियां हैं वो 3 घंटे तक सुनाता हूं। आज की ये महफिल इतनी ही, जाहिर है कि बहुत बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी और कहानियां कही जा सकती हैं। 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं। एक ऐसा गीतकार जिसने हमारी जिंदगी के बहुत सुनहरे पलों को बांटा है, हम विविध भारती परिवार की ओर से शैलेंद्र को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज का सृजन भारती कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय ब्रह्मात्मक जी क्या कहते हैं।
2: शैलेंद्र के यहाँ लोक बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है, चाहे वो लोकगीत की परंपरा हो, किस्से कहानियां हो, उसके अलावा भक्ति काव्य की निर्गुण परंपरा, सगुण परंपरा से नहीं लेते हैं वो, निर्गुण परंपरा से चीजें लेते हैं। अध्यात्म बहुत है उनके कविताओं में, उनके गीतों में, सब जगह है। जो 26 साल से पहले की उनकी उम्र है, जहाँ उनका शैशव है, जहाँ उनकी जवानी है, जहाँ वो काम करते हैं रेलवे में, 8 साल मशीन के तानपुरे के साथ में कविता करता रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उन्होंने खुद लिखा है। तो मशीन का तानपुरा, ये शिमली अपने आप में कैसी लगती है। और ये उनके टीचर ने कभी कहा था जब वो मथुरा छोड़ के आ रहे थे इधर, तब उन्होंने कहा क्या तुम अब मशीनों को सुन के गीत लिखोगे। उनके सारे गीत चरित्रों के हिसाब से लिखे गए हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से लिखे गए हैं और गीत संवादों का काम करते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है जानी मानी गायिका
3: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाश

0: वाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले समारोह में चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार के लिए कुल 82 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को चुना गया है। इनमें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री तथा खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा में प्रदेश से जुड़े 9 नागरिकों की जानकारी मिल गई है। इनमें 2 के परिजनों से संपर्क स्थापित हो चुका है। रायपुर के 5 नागरिक सुरक्षित हैं और वापस लौटने के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बिलासपुर और सरगुजा से जुड़े 2 नागरिकों के लापता होने की सूचना है। राज्य सरकार, नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे जिलों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा निर्मित है। इसके असर से प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 30 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल।

0: شرمو. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

0: मंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं

कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर। बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन शब्दों से आप गाने चुने, तो वो इबारत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। आज यूं ही पुराने पन्ने पलट रही थी, अचानक एक मुड़ा तुड़ा पत्र उंगलियों के बीच ठहर गया। उसके साथ सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां थी। वक्त ने जिन्हें मुरझा दिया था, मगर उनमें अब भी तुम्हारे प्यार की खुशबू बाकी थी। पत्र खोलते ही जैसे बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। तुम्हारे शब्दों में वो इंतजार था जो कभी मेरी रातों का साथी हुआ करता था। याद आया कि हमने गुनगुनाया था, रात भर आपकी याद आती रही, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, और तुम्हारा इंतजार और मैं खामोशी ओढ़े चांद को निहारती रहती थी। कितना कुछ चाह कर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सके। तुम मेरे हमदर्द, मेरे हमसफर थे, या शायद ये सब वो तेरे प्यार का एक बहाना था। ना समझ मन को कैसे समझाऊं, आज सूखी पंखुड़ियों को हथेली पर रखकर लगा चांद बदल गया, रात गुजर गई, इंतजार भी बीत गया, मगर तुम्हारी यादों के पत्ते सूख कर भी खुशबू नहीं खोए। तो ये है आज की इबारत, और इसी इबारत में छुपे हैं आज के शब्द, और एक एक शब्द में कई कई गाने छुपे हैं। तो आज जरा आपकी परीक्षा कठिन है, देखिए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं। आज तो हमने क्या किया है कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर आई और आपने जो गाने सुझाए हैं वही गाने हमने ले लिए हैं, और कुछ गाने अपनी ओर से हमने ऐड किए हैं। तो जरा गाने सुझाइए, देखिए हो सकता है आपके और हमारे गाने एक हो जाए। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम का, और ये संगम फिल्म का गाना है। सुनिए और देखिए कि इबारत में ये शब्द आया या नहीं, और कौन सा वाला शब्द है। साथ में बूझिए पहेली कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, आसानी से बूझ जाएंगे। दो हीरो हैं, एक हीरोइन है। पत्र कौन लिखता है किसके नाम, जरा ये बताइएगा। किसके नाम पत्र लिखा जाता है, किसकी ओर से, हीरोइन की ओर से पत्र लिखा जाता है तो किसके लिए लिखती है। संगम फिल्म का गाना ये रहा।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है। सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया। खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने में समोए हुए होते हैं। मुझे खत लिखना बेहद पसंद था, है, और मुझे खत के जवाब में इंतजार में भी मजा आता था। खत किसी का होता था, बुआ का होता था, जब बच्चे बाहर पढ़ते थे तो उनके खत की राह देख रही होती थी, पर वो रोमांच आजकल मैसेज के रिप्लाई आने पर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। तो जरा बताइए कि आप में से कौन आज भी पत्र लिखते हैं और किसके लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की फेहरिस्त लिखिए, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार और वो तेरे प्यार का गम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कैसे समझाऊं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे श्रोताओं ने गानों की लिस्ट भेजी है, और सच कहें तो आज हम आपके गानों को ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं पड़ते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की पसंद एक है आज। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुरानी किताबों के कभी पन्ने पलटते समय अनायास ही सूखा गुलाब का फूल नजर आने पर उसे कभी फेंकने का मन नहीं होता, आज भी वैसा ही रखा रहता है और बीते हुए पलों की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है। सूखे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाती नहीं बल्कि महकती हुई आंखों में उतर आती हैं। ये बताइए हमें कि क्या कभी आपने भी पत्र के साथ गुलाब का फूल भेजा था? अगर भेजा है तो वो लम्हा याद कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमें गुलाब और कली फूल वाला गाना भी सुझाइए कि कौन कोई ऐसा गाना है जिसमें गुलाब शब्द आता है या कोई फूल के नाम आते हैं, वो भी आप सुझा सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, माफ कीजिएगा, सूरज फिल्म का ये गाना, और बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हिंदी वर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है, खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल केसरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे, क्या तितली पकड़ में आती थी। वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है, सब लोग अपने अपने जमाने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे जरा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा, क्या बात है। हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए, और एक श्रोता

नहीं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं? ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो जरा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। एक श्रोता और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। इस ईमेल, एसएमएस के और व्हाट्सएप के ज़माने में भी, तो ज़रा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं? अभी अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को? याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज थी, और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में

मिल गए हैं वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियां तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबू में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है। कितना भी समय बीत जाए खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधले नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे। तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई। लेकिन अभी हम आपको कागज के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

सुन रहे थे आप कागज के फूल फिल्म का गाना, और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। गुरुदत्त और वहीदा रहमान, श्रोताओं ने सही बताया है, और गीता दत्त की आवाज थी, ये बहुत कम लोगों ने बताया। गीतकार का नाम भी श्रोताओं ने बूझा नहीं, कैफी आजमी थे। और अब अगली पहेली बूझिएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, उन्हें हाथ से छूने भर से वो पल वो समय नजर के सामने छा जाते हैं, होठों पर खुशी छा जाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूल तुम्हें मैं भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, खत में भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता नहीं मालूम।

और एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए। और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तितली को पकड़ना नहीं पर हाँ तितली से प्यार तो है, हमें रंग बिरंगी तितलियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। जब वो फूल पर आकर बैठती हैं तो हम उसे निहारते जरूर हैं और खुशी इस बात की होती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश फूलों के पौधे लगाने से इन्हीं नन्ही तितलियों को भोजन मिलता है। बस शायद इसीलिए ही हमें फूलों और पौधों से प्यार है कि वो सदा हमें देते ही हैं खुशी, कभी हमसे कुछ लेते नहीं। क्या बात है भाई। चलिए अब आगे बढ़े और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट। सुनिए और बताइए कौन है कलाकार, कौन हीरो, कौन हीरोइन। चाहे तो आप गीतकार का नाम भी पूछ सकते हैं, संगीतकार का नाम भी। फिल्म पेइंग गेस्ट।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि मेरी

का तीसरा गाना बज गया है और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप इबारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं और तब तक आपकी टिप्पणियां आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए। अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था। बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये। तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे की नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं? बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको बूझना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है। कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा, क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है। पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती? बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते। बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं, पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है, और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे एक गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे, और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है, और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए हैं। मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताजा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, समय तो 1 घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक लिया।

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाए हों फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट, ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था इस गाने का जिक्र

और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही पूछा और लता मंगेशकर की आवाज थी। अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

0: मिलखा जाग मिलखा जाग मिलखा अब तू भाग मिलखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद

0: पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts

0: को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुनी से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
3: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
5: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला।

0: मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
0: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हंसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, फिल्म 14वीं का चांद।

चौदहवीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे, डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने, और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी है और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी है, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

ढूंढो ढूंढो रे साजना मुरे कान का बाला, और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र, और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुना दूं आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा

कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं, भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्रगण। बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है, रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार। नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश भेजी है लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं, ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं की भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से। और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वच कामले, सुषमा वच कामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

और हमारे ये श्रोता हैं छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्राया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तो। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्णनगर टीवी टावर से।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहर गज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखो, क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: क्या मेरी कमीज? मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू? हैं हैं,
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है? तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे?
2: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब? चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।

0: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है? अकल?
1: हाँ, इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
0: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
1: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
0: देखो, मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
1: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
0: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
1: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इंसान को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ो, बैठ कर अखबार।
0: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वालों को, दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
1: अरे क्या है, क्या है?
0: ये देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
1: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
0: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
1: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
0: क्या कहा तुमने?
1: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
0: चाचा मर गए, चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
1: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
0: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
1: क्या?
0: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
1: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में, मैं तो भूल ही गई।
0: खाना खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है बहाना।
1: अब करना क्या है वो बोलो।
0: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
1: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
0: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
1: हाँ जी, गलती हो गई। बस
0: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
1: तो गलती सुधार लो।
0: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
1: बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
0: साफ सफाई कौन करे, मैं करूं?
1: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
0: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थवा दोगी?
1: तो नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
0: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
1: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
0: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
1: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी इधर।
0: एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला।
1: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
0: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
1: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
0: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
1: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
0: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
1: कहाँ जा रहे हो?
0: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाटकोपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
1: अरे अरे, मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ, जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
0: अब रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
1: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
0: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
1: चप्पल टूट गई है।
0: टूट गई? किसने तोड़ी?
1: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
0: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
1: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं, क्योंकि

0: पूजा के लिए ले जाएगा।
1: अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है, चलो जाने जाने दो। मेरे बूट कहाँ है, बूट लाओ।
0: वो
1: अरे भाई मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है।
0: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो उधर।
1: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
2: कल रात तुम ही ने वहाँ उतारे थे।
1: अरे इसके फीते कहाँ गए भाई?
0: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
1: कल तो थे ना।
0: चूहा ले गया होगा।
1: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
2: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता?
0: तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
1: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
2: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
1: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
0: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनो।

0: इसके फीते कहाँ गए भाई?
1: ओहो, अब मुझे क्या मालूम,
0: विकल्प तो थे ना।
1: चूहा ले गया होगा।
0: है? चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
1: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
0: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
1: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
0: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
1: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो, मनोहर लाल की धर्मशाला।
0: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
1: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
0: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
1: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
0: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो, जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
1: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
0: ओहो, तुम्हें इस घर में की है और इतने जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
2: मौसी का है बताइए ना।
0: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
2: मौसा जी, ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
0: ओहो हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
2: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
0: देन यू शुड नॉट मैरी बिकॉज मैरिज इज ए बिगेस्ट जोक।
2: प्लीज मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
0: घर में झगड़ा कर आई हो?
2: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
0: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
2: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ, आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
0: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
2: इनफ इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने।
0: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
2: घर मेरी मौसी का है।
0: और तुम्हारी मौसी मेरी है,
2: ऐसा आप समझते हैं?
0: क्या मतलब?
2: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
0: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
2: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
0: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो
2: मौसा जी?
0: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
2: नहीं।
0: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे फिरते थे।
2: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
0: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
2: हाँ लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
0: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
2: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
0: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
2: आप मुझे पता ये मौसी बढ़ गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
2: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
2: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
0: किसके बारे में?
2: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
0: क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
2: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
0: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
2: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना। सभी मर्द अहंकारी होते ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बस चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
0: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प रेखा।
1: अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? लीना तुम क्या हुआ?
0: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
1: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
0: इस पर पिताजी आए हैं।
1: तुम कब आई लीना?
2: अभी थोड़ी देर पहले।
1: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
2: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
1: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली।

0: रही थी ना?
1: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
0: क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
0: लीना, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
1: पति? गधा है गधा।
2: मालूम होता है लात खाकर आई है।
0: तुम बीच में ना बोलो जी।
2: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना? अरे लीना, ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पल पहन कर चला जाता हूँ।
0: अरे अरे, ये क्या पागलपन है?
2: थोड़ी छोटी होती है बस।
1: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
2: गुलाब जामुन, रस मलाई
1: मुझे नहीं खानी।
0: इनके चाचा जी बता रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
2: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
0: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
2: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
0: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
2: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
0: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
2: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
0: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
1: अरे अरे, कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो। जाओ ना।
0: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
1: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
2: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोल देता हूँ। अरे वीरेंद्र, तुम?
3: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
1: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
3: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
1: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम
0: लीना, तुम होश में तो हो? ये क्या बोल रही हो?
1: गेट आउट, आई से गेट आउट।
3: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
1: ये लोग कोई पराए नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
2: चलो ये वीरन के जूते ही डाले लेता हूँ।
0: ये तो क्या कर रहे हो?
2: ये बूट बूट बूट
3: ये बूट तो मेरे हैं।
2: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
0: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है।
3: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
1: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
3: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
1: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
0: लीना, वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों यूं?
3: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग, ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
4: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
3: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
4: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
3: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
4: क्या बोलो?
3: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
4: ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, हम बाग में बैठे।
3: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
4: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
5: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा?
3: नो,
5: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
3: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
5: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
3: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
4: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
3: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
4: जब भी हम अकेले में मिले

0: तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
1: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
2: हाँ
1: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
2: हाँ क्यों?
1: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
2: कितने का दूं बाबूजी?
1: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
2: वहां बैठने का 10 रुपया?
1: हाँ हाँ।
2: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
1: चलो किसी होटल में चलते हैं।
0: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
1: ऑल राइट, एज यू विश।
3: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
3: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
3: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
0: ये आपने कैसे समझ लिया?
3: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
3: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
3: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
0: आप क्या चाहते हैं?
3: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
3: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
0: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
3: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
3: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
0: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
3: मैं आगे बढ़ूं?
0: ओह श्योर।
3: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वह अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
3: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
0: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
3: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
0: फिर?
3: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
0: पर क्यों?
3: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
0: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
3: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
1: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
3: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
0: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा?
3: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
3: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
3: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
3: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
3: नाटक होता तो जरूर कर देता।
0: मतलब ये नाटक नहीं है?
3: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
0: आत्महत्या?
3: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
3: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
0: यानी कि?
3: यानी कि मैं ही अमर हूं।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
0: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
0: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।

0: सकती है।
1: रियली?
0: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
0: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, that's why I love you, darling। तुम भी कहो ना I love you। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
0: एक बार, बस एक बार कह दो ना I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured।
0: Okay, okay, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: Please, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
0: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरे खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
0: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
0: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना।
0: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
0: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
0: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
0: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
0: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you।
0: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
3: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
2: फोन करके देखूं चाचा जी कहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास कहाँ होगा।
2: अब कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
4: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है। मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कानड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: बॉम्बे टॉकीज,
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
3: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।

0: क्या बात है, अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर?
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात
1: है। मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
1: जी, आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है। बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही यू नो, पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही। तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है। क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले,

0: हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का यू नो आई एम वेरी, हमको आईपीएस ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज़। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
0: जी
1: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था।
0: जी बिल्कुल। आई थिंक हम सिक्स्थ क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे,
1: सिक्स क्लास में
0: सिक्स्थ क्लास
1: पैर
0: में
1: वैर पहुंच रहे थे गियर
0: नहीं
1: तक?
0: पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
1: भाग जाएगी
0: चाबी
1: और
0: चुरा
1: कोई
0: के।
1: एक्सीडेंट का डर
0: हाँ,
1: नहीं।
0: तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे
0: रोके
1: भगवान।
0: कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे। फिर
1: हाँ
0: हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे ये छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में। हम सिक्स्थ में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं, पता नहीं क्यों था मेरे
1: गाड़ी
0: अंदर।
1: मतलब
0: फोर व्हीलर
1: प्रॉपर
0: प्रॉपर,
1: वो
0: तुम
1: लाल बत्ती वाली?
0: नहीं, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में
1: हाँ
0: हम लोग
1: वो
0: जब
1: एक
0: फिल्में
1: आजादी
0: देखते थे,
1: का।
0: वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते हैं। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12 13 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे।
1: पैर
0: तो
1: पहुंचने
0: हाँ,
1: लगे।
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो अब भाई सिक्स से लेके एट्थ नाइन्थ तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8th से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो, बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बने कि बना है कि नहीं बना है, आ गया है तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है, तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से,
1: हाँ।
0: और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही, आप
1: एजुकेशन पर फोकस।
0: एजुकेशन पे फोकस है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग

0: रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम। तो पढ़ाई ही इकलौता था, अभी काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम। तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये जरूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस, आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर होते तो।
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में, वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स। क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है। तो किसी तरह से आई थिंक, और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
1: बहुत ही रेपुटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है। मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे।
1: मतलब इतनी काबिल है,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो,
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है। क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां।
0: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था। सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर। और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है। और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स। और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहां के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले। तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया।
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा। तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो, जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: क्या प्यारा गाना है, सुनते ही ये गाना।
1: चल

0: बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक सीएसआर हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम सेवेंथ एर्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। अच्छा, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हम

0: को हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं. और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, आई सेड आरजे. सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी. रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद.
1: क्या बात है. बहुत ही सही है, बहुत ही सही है. पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में आपने?
0: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस. मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी. और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा. मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वाज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई.
1: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
0: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है. तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं. क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं. बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो. ठीक है, चलो माफ किया, छोड़ दिया हमने. इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो. तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे. इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे. हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं.
1: मेरे माँ बाप को 12th
0: के एग्जाम के दौरान.
1: वेरी गुड.
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम देके निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे. मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो. भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं.
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था. आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी. और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे. और वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा.
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहाँ आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहाँ के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए.
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था. बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था. तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे. कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं जिनसे मेरा सामना नहीं होता है. और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था. हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था. तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था. तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था. ऑल दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा. अंग्रेजी इसको कैसे आती है. और रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से, जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ

0: आपके अंदर
1: बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी, तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको, अब तो
1: अच्छा
0: आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने और
0: हाँ
1: अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया, घर्ष किया था।

0: बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी अपने
1: अपनी कमजोरी में, दुनिया के
0: कमजोरी
1: सामने
0: दुनिया के सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो तूफान,
1: ऊपर सब कुछ स्थिर है,
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ,

0: मेरे लिए,
1: अंदर
0: क्योंकि
1: बहुत तूफान चल रहा
0: अंदर
1: है
0: तो
1: लेकिन
0: तूफान,
1: ऊपर सब कुछ स्थिर है।
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था, लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी
0: हाँ तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा
0: नहीं, बिल्कुल
1: एक
0: भी
1: दिन
0: नहीं,
1: दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने?
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
1: हाँ
0: और तब हमको लगा था ठीक है अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई, तो वो मेरा मन रख रही हैं। हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बींग, तो वो कर रही हैं जो उनको करना है, पर जो वो कह रही हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए,
0: जी
1: वहां से लौटने के बाद
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा?
0: बहुत स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है,
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक हो
0: पहले
1: गई?
0: था हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है
1: अब नहीं है,
0: स्टूडियो नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम
1: कॉटेज
0: होता था,
1: था।
0: कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा हो एक
1: बिल्कुल,
0: कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की
1: यस,
0: फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस
1: वहां
0: प्रॉपर्टी
1: पर
0: रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए, इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है,
1: हे
0: ये
1: भगवान।
0: स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं उस वक्त हम तो किसी किस कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनी वन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम
1: मतलब
0: दुखी
1: एक
0: हैं।
1: अकेले कमरे में
0: अकेले
1: अपना
0: कमरे में
1: पूरा
0: रो
1: दुख,
0: के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ
1: गजब
0: लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल, और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे यू नो, और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजे का तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, यू नो, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे कि बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और यू नो, क्योंकि हम बोले ना हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं, सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को यू नो हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने
0: वापस
1: माँ बाप को
0: लौटना,
1: बताना।
0: बताना, उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता, ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
1: बीच
0: शी
1: में
0: इज
1: तो एक
0: अराइव्ड,
1: भंवर है कि अब क्या करें।
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो

0: उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माई गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वॉज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वॉज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है, सब मुड़ के देखते हैं, ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है।
0: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं।
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है, बट ये सपोर्ट होता है। वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान होता
0: है, सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं, 2-3 साल के अंतर पर।
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वहीं होती थी और स्माइल के साथ वहीं रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे। तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं

0: करते तो तुम वो तो बनती नहीं जो तुम हो। तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मूड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज। कोशिश करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है।

0: क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है। जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है,
1: बिल्कुल
0: जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते भी, जरूर सुनिएगा इस बात

बातचीत का दूसरा भाग चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CFO विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, धमनी, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये दुप्पी, चौरा, मरकाडाण, लोधीडाण, आबादी, बिशुनपुर, सिलाजू, पेंडारी, कोटराही, पोखरा, गुरमुटी, चिनिया, महावीरगंज, कनक पुर, रामपुर, बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, चकेरी, बासेन, परोगिया, घाटबर्रा, घासीडी, सरगा, बोड़ाझरिया, सिहारजोर, शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चुंदी, कुंजारा, पाकर टोली, श्री टोली, उपका पानी, बंदर चुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, शाही डांड, कजरा, नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कूड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल

0: के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी, जाम पानी, साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी, देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी, गुड़ागढ़, अचानकपुर, तेंदुचुआ, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायली खंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। और अब समय हुआ है श्रोताओं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म जीवा से। आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार की, गुलजार की रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

0: जीवा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें आशा भोसले और अमित की थी। इस गीत को लिखा था और कार्यक्रम में अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: अगला गीत है फिल्म जैकपॉट से, स्वर अरिजीत सिंह का। गीतकार हैं तुराज और अजीम, संगीत शारिबर

ताल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ दी थी अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, संगीत से सजाया ए आर रहमान ने। और अब अगला गीत है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, गुरु फिल्म से। गुलजार के बोल है ए आर रहमान का संगीत, श्रेया घोषाल के साथ साथ श्रोताओं उदय मजुमदार ने भी इसमें अपने स्वर दिए हैं।

0: गुरु फिल्म का ये गीत श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की, गुलजार ने इसे लिखा था, संगीत दिया था AR रहमान ने। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें।

0: यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: कृपया कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। श्रोताओं, कल सुबह 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत के बाद डॉक्टर के साथ। इसमें श्रोता सुनेंगे अतिथि चिकित्सक मनोज राय से बातचीत। बातचीत का विषय होगा नियमित जांच क्यों जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। और श्रोता सुबह 9 सुनेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम, नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह से बातचीत डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। तो सुनना ना भूलिएगा सुबह 7:30 पर और सुबह 9 हमारा ये विशेष कार्यक्रम। शाम के 5:35 हुए हैं श्रोताओं, और अब समय हो चला है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का।

ईमेल करें, गीत सुने, सुनने वाले श्रोता साथी स्वीकार करें आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए, करीब फिल्म से आवाजें हैं कुमार सानू और संजीवनी की। राहत इंदौरी ने इसे लिखा है, संगीत दिया है अनु मलिक ने। पसंद आप सभी श्रोता साथियों की आई है। साल्हे भाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल किरण, दिव्यांशी और खेमू ध्रुव। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। कालका से पसंद आई है शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। कैथल हरियाणा से हैं जयवीर सिंह राठौर और अनिल शर्मा। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। हांसी से पसंद भेजी है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और पप्पू डब्बू ने। पांकुड़ झारखंड से पसंद आई है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद की। बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव। भाटापारा से हैं आप विष्णु साहू, पूरब, वीरा, हर्ष, कुमकुम और योगेश्वरी साहू। और गिरिडीह झारखंड से पसंद आई है मोहम्मद यासिन अनजान, साइमन नवाज, हसन अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत और सादिया की। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय कछभिये। नरगोड़ा से पसंद कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की आई है। और आप हैं कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी, मोहम्मद अफसल मलिक। गोगावा से हैं सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश और रमेश गौड़। और रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का मेल। सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयाश कुमार चंदन ने भी इस गीत को पसंद किया है। तो लीजिए आप सुनिए करीब फिल्म का ये गीत कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में।

माँ देवरी भाटापारा से है केआर साहू, आकाश कमलेश मुरली छत्री, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल चंपा साहू, मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल, और महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलहत फरहत रिफत, और साथ में हैं नुजहत जहानाज, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज। इसी गीत को अड़ारनाथ घाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा ने पसंद किया। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे का मेल आया है। कुरावली से पसंद भेजी है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु प्रकाश। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, इन्होंने भी इस गीत को पसंद किया। पौड़ी भाटा अकलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल चंदन। भुचो कैंचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करण वीर करण, तपेंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू एकम दमन और अभिजोत ने इस गीत को सुनना चाहे। और आप हैं दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, इन्होंने भी इस गीत को पसंद किया। ये मेल हम तक पहुंचा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजित आयुष और नंदनी जंघेल का, और मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। नैला बोरसरा से पसंद इसी गीत की आई है हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता और विष्णु प्रसाद तिवारी। तो लीजिए सुनिए फिल्म जन्नत का ये गीत।

कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में करीब फिल्म का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। राहत इंदौरी ने इसे लिखा था, संगीत अनु मलिक का था। और अब अगला गीत है फिल्म जन्नत से, के ने आवाज़ दी है अपनी, सईद कादरी के बोल हैं और प्रीतम का संगीत। पसंद लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर गुरलाल और अविराज सिंह की। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार कमिल। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन।

जन्नत फिल्म का ये फरमाइशी गीत अभी आपने सुना। बलि जी सुनिए फिल्म महबूबा से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी का लिखा और आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये फरमाइशी गीत। पसंद तंगोरी SAS नगर मोहाली से, मोहाली पंजाब से, गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महीकप्रीत और सहजप्रीत सिंह की। रायगढ़ से हैं सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, कुमकुम गुड़िया। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान तायडे और विजया तायडे। जी गांव विदर्भ से हैं वसंतराव भोजनी और PS नहवाकर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाहबख्श, राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। बठेना पाटन दुर्ग से पसंद भेजी है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा ने। कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता प्रियाली और पार्थ हागोड़े। कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार और हैप्पी राय। और जगराव से पसंद सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाविया, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव की है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भाटिया। जिला नांदेड़ ताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल का ईमेल। बागबहरा भदरसी से पसंद पन्ना लाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन की। और देवरी भाटा पारा से हैं गन्नूलाल रजक, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। बाड़मेर राजस्थान से पसंद आई है बबलेश पवार, डैनी, मनीष पवार की। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी साहिल, भारती बघेल। गंडे टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जय श्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन। लक्षनपुर से पसंद आई है विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू की। दतरंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आप है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, अनुराग मोहन। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचर और माही सेन का ईमेल हम तक पहुंचा है। और तेलीवाला से है निशार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान। और इसी गीत को इन श्रोताओं ने पसंद किया। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित, गर्वी हिमाक्ष। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी।

टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी और साथ में प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी थांदी। रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी का मेल। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना बंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की पसंद। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा। गांव जाखो से शंभुदयाल खटक बिमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक पूजा खटक और आप है भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला श्याम कुंवर चीनू आसमा। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म महबूबा का ये गीत।

से इस गीत को स्वर दिया है यासीर देसाई और आकांक्षा शर्मा ने। गीत और संगीत है आरको का और पसंद आई है इन श्रोताओं की। छोटी बलिया मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले साथ में हैं। हमारे ये श्रोता साथी भी धुर्राबंदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देवकुमार नवीन, युवराज साहू, संबलपुर कांकेर से पसंद फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव की आई है। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा काफिर, स्वाति माखीजा, सविता माखीजा साथ में हैं, माही पूजा छुटकी और शरद डोटवानी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद, पुष्पेंद्र कुमार, पलारी से पसंद प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा की। खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे और किट्टू। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। भाटापारा से पसंद भेजी है सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश, आकाश शर्मा, अकीता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव वेदेही और हंसिका जोशी ने इस फरमाइशी गीत को पसंद किया। यशोता वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं, मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। तो लीजिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म शादी में जरूर आना, इस फिल्म का ये फरमाइशी गीत।

शादी में जरूर आना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की, गीत और संगीत था आर्गो का। और अब इसी गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने से मुझे दीजिए अनुमति। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 6:20 और शाम 7:00। शाम के 6:05 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी दे दे श्रोताओं आज की सभा की शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे आज शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी। रात 8:00 कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनेगा अभिजीत पोहनकर की आवाज़ में कुछ गैर फिल्मी नगमे। और इस कार्यक्रम के बाद लेकर आएंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रात 9:15 से रात 11:00 तक हम रिले करेंगे। और अब आपको जानकारी दे दे कल की सभा के कार्यक्रमों की। कल आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे 10:55 पर कार्यक्रम मन की बात। इसके तुरंत बाद अनुप्रसारित होगा मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। और इस कार्यक्रम के बाद श्रोता जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से शाम 5:00 तक। रात 8:00 मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से कल शाम 7:30 पर रिले करेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल शाम 7:30 से क्रिकेट मैच की समाप्ति तक। इस बीच समाचारों का अनुप्रसारण उनके निर्धारित समय पर किया जाएगा। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात। कानून की बात में सुनेंगे श्रोता सिविल प्रक्रिया संहिता, बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। इस विषय पर श्री रवि पांडे सचिव अधिवक्ता संघ बिलासपुर से ली गई जानकारी। 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें आप सुनेंगे अतिथि चिकित्सक मनोज राय से बातचीत, विषय होगा नियमित जांच क्यों जरूरी है। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। रात 9:00 श्रोता सुनेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह से बातचीत, विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। और 10:00 कार्यक्रम आओ बच्चों हम लेकर आएंगे श्रोताओं, इसमें सामयिक चर्चा करेंगे स्नेह की राखी इस विषय पर। और प्रायोजित कार्यक्रम NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय परिसर तिफरा बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति लेकर आएंगे। साथ में सुनिएगा अदिति से की गई बातचीत, प्रस्तुति होगी मनाली ठाकरे की।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा मशरूम उत्पादन कर अतिरिक्त आय।

0: कमाए, साथ ही आनंद लीजिएगा फरमाइशी लोक गीतों के कार्यक्रम आप मन के गीत का। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दे, कल सुबह 9 बजे सुनिएगा विशेष फोन इन कार्यक्रम। नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत, विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। आज महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के मौका में प्रदेश के मुख्यमंत्री 125 जिन खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य खेल अलंकरण लेकर सम्मानित। प्रधानमंत्री काली बिहन 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम के 137वां कड़ी में देश विदेश के लोगन मन लेकर ही अपन विचार साझा। और मौसम विभाग अब यह 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 13 जिला में येलो अलर्ट जारी करे है। 1-2 जगह में भारी वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। देशभर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद के जयंती ला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाते। ये मौका में प्रधानमंत्री मेजर ध्यानचंद ला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जम्मू खेल प्रेमी मल्ला राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभकामना देवत किहिन कि इखर समर्पण और संकल्प देश ला गौरवान्वित करते। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में प्रदेश में घलो कतकोन कार्यक्रम हुआ थे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री 125 जिन चुने गए खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य खेल अलंकरण ले सम्मानित करीन, जेमा 82 खिलाड़ी और 43 प्रशिक्षक और निर्णायक शामिल है। ये मल्ला शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी देगी। नेपाल में आए बाढ़ में मृतक मन की संख्या बाढ़ के अब 626 हो गए है और 2000 ले ज्यादा लोगन मन लापता है। इस बीच भारत बाढ़ प्रभावित नेपाल ला मदद दे के सरलक काम करत है। विदेश मंत्रालय है बताइन कि 320 भारतीय नागरिक मन ले अब तक संपर्क नहीं हो पाए है। इस बीच बाढ़ में फंसे छत्तीसगढ़ ले जुड़े 9 जिन लोगन मन के जानबा मिल गए है। उन्हें रायपुर के 5 जिन लोगन मन लघलो सुरक्षित हवे। फिर बिलासपुर और सरगुजा ले 2 जिन लोगन मन के लापता होए के सूचना मिले है। राज्य सरकार नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसी मन संग सरलक गोट बात करत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले अपन विचार साझा करी। मासिक रेडियो कार्यक्रम के यह 137वां कड़ी होगी। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के जम्मू चैनल, आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और मोबाइल एप में करे जाही। संगे संग आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय के संगे संग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल में एकर सोझे प्रसारण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा और जन समर्पण के 25 बछर पूरा होए के मौका में आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राज्य स्तरीय कार्यशाला राखेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल के संगे संग प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और पार्टी के पदाधिकारी मन शामिल हुई। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौका में भाजपा 17 सितंबर ले 18 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाही। इस दौरान प्रदेश भर में पार्टी कोती ले कतकोन सेवा गतिविधि के कार्यक्रम करे जाही। केंद्र सरकार शक्कर ला बेरा में दिवाए बर अभी के मासिक कोटा प्रणाली के जगह में अवैया महीना ले पखवाड़ा के आधार में शक्कर आवंटन प्रणाली शुरू करे के फैसला ले है। एमा चीनी मिल मल्ला पहली हफ्ता में कम ले कम 40% आवंटन और बांचे मात्रा ला अगला हफ्ता में बेचना होही। केंद्र सरकार डहर ले सार्वजनिक परीक्षा सुधार मन बर बनाए गए उच्च स्तरीय कार्यबल छात्र पालक और शिक्षक मन के संगे संग जम्मू हितधारक मन ले सुझाव

0: मंगाए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800180474747 के माध्यम ले भेजे जा सकते। ये सुझाव ईमेल के माध्यम ले घलो भेजे जा सकते। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA धार ले राखे गए परीक्षा के संगे संग सार्वजनिक परीक्षा मन के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और प्रशासन ले जुड़े बड़का सुधार के जांच और सिफारिश पर जाने माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल के गठन करेंगे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बांचे समाचार को थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषय मन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है ISO जून में हुए अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा ला एक घाव फेर करवाए के घोषणा करे है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्र में टाइपिंग, अनुवाद और भाषा ले जुड़े गलती पाए जाए के बाद ये फैसला ले गए है। 16 अगस्त के समाजशास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषय के उत्तर कुंजी जारी करे के बाद तीनों परीक्षा अगला महीना के सितंबर में एक घाव फेर कराए के घोषणा करे गए है। ये परीक्षा 9 और 10 सितंबर के होगी। राज्यपाल रमेन डेका आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला के चांपा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राखे गए सम्मान समारोह में शामिल हुई। ये मौका में राज्यपाल वरिष्ठ शिक्षक और कक्षा 10वीं 12वीं के होशियार लड़का मन ला सम्मानित करीन और संगे संग स्कूल में नवा बने सभा कक्ष के लोकार्पण करीन। छत्तीसगढ़ पुलिस डहार ले 15 अगस्त ले शुरू करे गए साइबर जागृति अभियान के तीसरा हफ्ता काली ले शुरू हुई। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा बताइन कि ये अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिक मल्ला डिजिटल अरेस्ट ले बचाव के जानबा दे के संगे संग पुलिस अधिकारी मन बन के करे जाए फर्जी कॉल के माध्यम ले धमकी जैसन खतरा ले बांचे के उपाय बताए जाही। संगे संग बैंकिंग ले जुड़े जानबाला साझा करे के जोखिम और साइबर ठगी ले बचाव के उपाय के बारे में लोगन मल्ला जागरूक करे भर अभियान चलाया जाही। जसपुर में पहली घाव चेकमेट ए जसपुर अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता आज ले शुरू होगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साहू करीन। 1 सितंबर तक चलैया ये प्रतियोगिता में 12 राज्य के 175 खिलाड़ी और कोच मन भाग लेवत हैं। प्रतियोगिता 8 चक्र में फिडे स्विस प्रणाली के माध्यम ले होवत है। बिलासपुर जिला में आज ट्रक के टक्कर ले फटफटी में बैठे 3 मनखे के मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़ के भाग गए। ये घटना जूनापारा चौकी थाना क्षेत्र के है। पुलिस के मुताबिक 3 मनखे मन फटफटी में बैठ के जात रहीन, यही दौरान ट्रक ले एकर गाड़ी टकरा गए। ये घटना में 3 मनखे मन के मौकच में प्राण छूट गए। ओती कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में आज बिहनिया गांव किनारी के तीर एक ठिन तेज रफ्तार फटफटी चलैया ट्रक ले टकरा गए। एक घटना में 1 मनखे के मौत हो गए और 2 आने मनखे मन गंभीर रूप ले घायल हो गए हैं। अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर के संगे संग प्रदेश के कतकोन जगह में आज हल्का ले मध्यम वर्षा हुआ थे। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक ठिन नवा सिस्टम बने हैं। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास निम्न दाब के क्षेत्र सक्रिय है। उन्हें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तट ऊपर ऊपरी हवा के एक ठिन चक्रवाती घेरा बने हैं। एकर असर रे प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बने हुए है। मौसम विभाग अब या 24 घंटा के दौरान रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और जसपुर जिला पर येलो अलर्ट जारी करे है। तो उन्हें एक दो जगह में भारी वर्षा होने की चेतावनी दे है। अब थोरकुन समाचार सार में। राज्य शासन है भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य ला छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद में पदस्थ करे है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू आज जसपुर में 93 करोड़ रुपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन और सुकमा जिला के पोलमपल्ली स्थित बालिका पोटा केबिन में पाछू दू दिन में 47 झीन छात्रा मन बीमार हो गए हे। ओमल्ला दोर्नापाल स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती।

0: आगे हे संशो जताए गए हे कि फूड प्वाइजनिंग की स्थिति छात्रा मन के तबियत बिगड़े हे। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर, आज महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के मौका में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ह 125 जिन खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य खेल अलंकरण लेकर इन सम्मानित। प्रधानमंत्री ह काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम के 137वां कड़ी में देश विदेश के लोगन मन लेकर ही अपन विचार साझा। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 13 जिला में येलो अलर्ट जारी करे है। एक दो जगह में भारी वर्षा होए के देहे चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनिए।

फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुनने वाले श्रोता साथी स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत अलका याग्निक और मनोहर उदास की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म जानवर से। समीर ने इसे लिखा है, संगीत आनंद मिलिंद ने दिया। पसंद आइए भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव सियाराम चोवाराम वर्मा सूरज बारिकर नारायण यदु और भुवन कामरी की। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला आरती कुमकुम और गुड़िया। बिलाईगढ़ से हैं खीकराम देवांगन रेणु रजनी प्रियंका देवांगन। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। बड़वाला हनुमंत फाजुल का पंजाब से विनोद मायल सीमा लक्षिता यसिका और विधा देवी। पूर्णा जक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत अरुणा सुलोचना चेतन भगत। कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से पसंद सुधाकर राज जाधव देशमुख प्रशांत देशमुख जय संचित तवयाल प्रथमेश सर्वद प्रणाली सानवी और हर्षता देशमुख की आई है। भोपालगढ़ राजस्थान से पसंद भेजी है धर्मेंद्र छिम्पा कपिल ईशान पूजा परिहार ने। बगबुड़वा पथरिया से है नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम। अमरावती से हीरमन शेंडे शीला देवी और सिद्धार्थ गुंडा ने। महरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से हैं आप अभिजीत कहवाड़कर सरिता प्रिंस कंस कहवाड़कर। बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिंपल प्रियांश और भाव्य देवांगन का मेल हम तक पहुंचा है। रायगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी महेंद्र कुमार जोयामनी उमा तिवारी। नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहवाकर निर्मला विशाल नहवाकर। दादरी गेट भिवानी से पसंद कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा की आई है। तेलंगाना मोहनगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन। पलारी से पसंद हमें भेजी है नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग पूना राम और कृष्णा देवांगन ने। खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घूर्णी करिश्मा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा का ये मेल हम तक आया है। और आप है नेपा नगर मध्य प्रदेश से श्रोता सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म जानवर का ये गीत।

जानवर फिल्म का ये फरमाइशी गीत अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ों में आप तक पहुंचा रहे थे। समीर ने लिखा था, आनंद मिलिंद का संगीत। और अब लीजिए सुनिए फिल्म बेताब का ये गीत। आवाज़ें हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। और पसंद भेजी इन श्रोताओं ने पीपरलोड सुरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीमालाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुखी।

राकेश कुमार साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपार ढींगिया, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, जयंती ममता, मनीषा मंजू, मानसी सुरेंद्र, मोहन सिंह सहोदरी, मनमोहन सिंह और गिरजाबाई मरकाम। लेवाई से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ये श्रोता हैं दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना यदु। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म बेताब का ये गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म मौसम का ये गीत, भूपेंद्र की आवाज, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। पसंद आई है लुत्रा खमारिया से, अकरम अमीन, अर्श और आतिका की। सलार पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजदा मिराज दीन और रेयर रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। रसेड़ा से पसंद मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति डिकेश, वाशु डॉली और पूर्वेश साहू की आई है। पैठड़ से हैं सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल, अनफ, अनम और रसीद वारसी। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। जमानिया से SP जायसवाल, टिम्पल आशुतोष और अभिनव जायसवाल का मेल हमें मिला है। और ये श्रोता है कुलहन टोला गोरेला पेंड्रा मरवाही से, भुवनेश्वर धुर्वे, मानवी और सौरभ। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर मौसम फिल्म का ये गीत।

और अब बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की तरफ और सुनाते हैं आपको जॉनी मेरा नाम इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, पसंद गुमला झारखंड से नजमुल हौदा समजावेद शगुफ्ता अंजुम की, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत संगीता कंवर, तुषार सिंह रिंकी शेखावत की, मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन संदीप उगलानी जगमोहन प्रजापति किरण और यशोता गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा सागर सीताराम अंशिका बोट तमन्ना कांगड़ा महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश प्रज्ञेश संघई और जालंधर से पसंद संदीप ज्योति मन्नत भरत कमल शाहनी की भाटापारा से दानसी रावत दानू पद्मनी नीरज शुभम सौरभ रावत का मेल पांडर कवड़ा से है अनिल बुरांडे उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान ईशान अरमान और इनके साथ ही पोटिया कला दुर्ग से संजय सुजाता शशांक सीमा साहू और खमरिया से पसंद साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार की आई है। तो लीजिए श्रोताओं आप सभी सुनिए जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का ये गीत।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संग।
1: हम जकड़ेंगे
2: मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो
1: हम पकड़ेंगे,
2: छोड़ो ना
1: नहीं।

0: पर महेशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अभी हम प्रसारित कर रहे थे FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज रायपुर में मुख्यमंत्री ने 125 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश

0: और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। बिलासपुर जिले में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 125 चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया। इनमें 82 खिलाड़ी और 43 प्रशिक्षक और निर्णायक शामिल हैं। इन्हें शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक हर साल आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी इस साल छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार 5 प्रमुख मिशनों पर काम कर रही है। इनमें खेल उत्कृष्ट मिशन भी शामिल है।
1: छत्तीसगढ़ के अंदर में जो प्रतिभा है उनको तराशने का काम हो रहा है और खेल को आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग 5 मिशन में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। उसमें एक मिशन हमारा खेल उत्कृष्ट मिशन भी है। ये 100 करोड़ बजट का है। इसमें हम लोग आने वाले समय में जो पूरे प्रदेश के अंदर खेल जगत की जो प्रतिभाएं हैं उनको खोजने का, उनको तराशने का काम करेंगे और आने वाले समय कॉमनवेल्थ ओलंपिक जैसे खेलों के लिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को तैयार करेंगे। ऐसा सरकार का पूरा पूरा प्रयास है।
0: समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा और जनसमर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सेवा ही संकल्प अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लाभार्थियों तक पहुंचें। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में पार्टी की ओर से विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का तीसरा सप्ताह कल से शुरू होगा। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा ने बताया कि अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी कॉल के माध्यम से धमकी जैसे जोखिम से बचने के उपाय बताए जाएंगे। वहीं बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने के जोखिम और साइबर ठगी से बचाव के उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल

0: मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर जिले में आज ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ये हादसा जूनापारा चौकी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 3 युवक एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इसी दौरान ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह ग्राम किनारी के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच बाढ़ में फंसे छत्तीसगढ़ से जुड़े 9 नागरिकों की जानकारी मिली है। इनमें 2 के परिजनों से संपर्क हो चुका है। वहीं रायपुर के 5 नागरिक सुरक्षित हैं और वापस लौटने के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बिलासपुर और सरगुजा से जुड़े 2 नागरिकों के लापता होने की सूचना है। राज्य सरकार, नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमिंडे का आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के चांपा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने वरिष्ठ शिक्षकों और कक्षा 10वीं 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय में नवनिर्मित सभा कक्ष का लोकार्पण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक अपने आचरण और व्यवहार से विद्यार्थियों का रोल मॉडल बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने और कौशल विकास के लिए सहायक है। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित सप्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में आज से प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक सुनील सोनी ने किया। 31 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जशपुर में पहली बार चेकमेट एट जशपुर अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने किया। 1 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के 175 खिलाड़ी और कोच भाग ले रहे हैं। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शतरंज परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और जशपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अजशपुर में 93 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और सुकमा जिले के पोलमपल्ली स्थित बालिका पोटा केबिन में पिछले 2 दिनों में 47 छात्राएं अचानक बीमार हो गई। उन्हें दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज रायपुर में मुख्यमंत्री ने 125 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। बिलासपुर जिले में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: दादी को कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा।

0: होता है, तोड़ना नहीं है।
1: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
0: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
5: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
4: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
5: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
4: 47 सालों से निरंतर सेवा में
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
6: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
7: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
6: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
8: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
9: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
10: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
11: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 7:01 हुए हैं, लीजिए सुनिए, ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का शेष भाग लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी खुशबू। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं धरती कहे पुकार के, इस फिल्म के गीत के साथ। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद डोंडी लोहारा बालोत सिंह, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार डॉली, पूजा राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और अल कबीर की आई है। मलोट पंजाब से ही राज शर्मा, मीना योगेश, निवान मैंडी, सौरभ शाइना शर्मा। नाभा पटियाला पंजाब से पी सोमदत्त, कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। और ये श्रोता हैं बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। प्रत्यापारा जुना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगा, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि, शनि रियांश, कान्हा आदित्य देवांगन। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। बरेली कैंट चैनहटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार रागनी और मुस्कान ने इस गीत को पसंद किया। गांव खेड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से सहजी बुटकी, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़ी का मेल हम तक पहुँचा है। और ये श्रोता है हमारे ग्राम धनगवा जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही से, श्रोता है सोहन सिंह ओटी, बसंती रूप सिंह, लक्ष्मी ओटी और इनके साथ ही है मिश्राम परिवार से रामायण सिंह, नागेश्वरी, चांदनी, सूरज और नंदनी, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। आप है अमरावती से ही रमन शेंडे, शीला देवी, सिद्धार्थ गुंडाने। और कुरावली से पसंद अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा की आई है। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी हमने आपको सुनवाया। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत मेरे सनम। इस फिल्म से ओपी नैयर का संगीत है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, पसंद जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया की। लोडमी चचेड़ी से पसंद आई है कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी की। और आप हैं सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशुष नाली नारंग, राजकोट से जगदीश गुजराती, प्रवीण पुजारी। बिलासपुर से पसंद भेजी है छन्नूलाल शिवास, सुनीता, पुष्पांजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी ने। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से पसंद आई है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े का मेल हम तक पहुंचा है। ये श्रोता है कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और दरियारपुर बाबली से हैं गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका येले। और इसी गीत को पसंद किया है रोहांसी से डगेसर राम साहू, घनश्याम, नूतन, गौरव, अलका, जानवी साहू ने। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब लीजिए सुनिए हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म से आनंद बख्शी का लिखा गीत, स्वर किशोर कुमार का संगीत, आरडी बर्मन का पसंद, इन सभी श्रोताओं की। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार, बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमूल मानकर, शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल ईशान, पूजा परिहार, मंडी डब्बाली से पसंद भेजी है राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग ने, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले, और गुजरात से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता का मेल हम तक पहुंचा है। तो लीजिए सुनिए किशोर कुमार का गाया ये गीत हरे रामा हरे कृष्णा।

कृपया कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं सुनिए श्रोताओं। कल आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे सुबह 10:55 पर कार्यक्रम मन की बात, और इसके तुरंत बाद अनुप्रसारित होगा मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कल रात 8 बजे मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, और आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:30 पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल शाम 7:30 से क्रिकेट मैच की समाप्ति तक हम रिले करेंगे। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम कानून की बात में सुनिएगा सिविल प्रक्रिया संहिता, बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, इस विषय पर श्री रवि पांडे सचिव अधिवक्ता संघ बिलासपुर से ली गई जानकारी। सुबह 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे जीआई फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे अतिथि चिकित्सक मनोज राय से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। बातचीत का विषय होगा नियमित जांच क्यों जरूरी है। सुबह 9 बजे हम प्रसारित करेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम। नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की ओर। आपको सुनाते हैं दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत। पसंद है हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम इमरान, इरफान और जिशान खान की। सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डी कैस्ट्रो। नांदघाट कातल बोर्ड से भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत। बोड़सरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूतियांशु, बबली और प्रियांशु साहू। और ओवरेठी परा भाटापारा से पसंद अनीता साहू, वीणा नेहा, मुनीषा साहू की आई है। इसी गीत को लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज ने पसंद किया। नागपुर से हैं प्रकाश रभाड़े, भारती जानवी, वैष्णवी हर्षल रंभाड़े। और रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट का मेल आया है। खंडवा से इसी गीत को अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर ने भी पसंद किया। तो लीजिए सुनिए दिल तो पागल है इस फिल्म का ये गीत।

0: दिल तो पागल है इस फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ दी थी उदित नारायण और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की रचना थी, संगीत से सजाया था उत्तम सिंह ने। और अब इसी गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दे, कल सुबह 9 बजे सुनिएगा विशेष फोन इन कार्यक्रम। नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। विषय होगा बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा। और सुबह 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। कार्यक्रम में अतिथि चिकित्सक मनोज राय से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत हम लेकर आएंगे। विषय होगा नियमित जांच क्यों जरूरी है, तो सुनना न भूलिएगा। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के

0: भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
0: किसान हम,
1: किसान हम।
2: अच्छा सरिता, हमार खेती किसानी के बूता मा हमन ला मौसम के हिसाब से, महीना के हिसाब से, बखत के हिसाब से, कहन की पानी हवा आसपास के वातावरण के हिसाब से खेती किसानी करे लगते। अब ये खेती किसानी के बूता बड़ सावधानी के बूता हरे, बेरा के बूता हरे। ऐसने अभी के महीना खेती खातिर बहुत अवसर देने वाला होते, विशेषकर बरसाती सब्जी, दलहनी फसल और कुछ अगेती फसल खातिर ये महीना बहुत बढ़िया होते। ये बेरा पानी के निकासी, रोग कीट प्रबंधन और सही किस्म के चुनाव बड़ जरूरी होते।
3: बिल्कुल सही कहा था चंपेश्वर। और अभी बोए जाने वाले सब्जी में प्रमुख फसल में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, धनिया, गाजर, पताल, मिर्चा, भाटा, खीरा, लौकी, करेला, तुरई और जैसे कि कद्दू है, भिंडी, पालक भाजी, चौलाई भाजी, ये सब प्रमुख है।
2: अब ये ना अभी किसान मा कहन की किसान संगवारी मन हा ये रकम ले सब्जी उगाते ना तेमा फायदा घलो बड़ होते,
3: बहुत होते हैं।
2: और ये का है तुरंत के साग भाजी हरे और बाजार में एकर मांग घलो रही थे, तो यही रकम ले दलहनी फसल मा मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया जैसन फसल है उन्हें कुछ क्षेत्र में हल्दी और अदरक के बुआई भी करे जा सकते। अब यहू बात ला जानना जरूरी है सरिता कि ये महीना में कौन से खेती ज्यादा उपयोगी है जिन कम बेरा में तैयार होके ज्यादा ले ज्यादा लाभ देवे।
3: बिल्कुल सही कहा था। और कम बेरा में तैयार हो या फसल में मूली है, धनिया है, पालक और मेथी जैसन जो विकल्प है बहुत बढ़िया है। संगे संग बेल वर्गी सब्जी मा खीरा, लौकी, कद्दू, करेला के जे हम बात करे हन वह जल्दी मिल जाते। और कोनो बरसात के बाद के आने वाला बाजार के योजना बनावत हन तब ही फूल गोभी और पत्ता गोभी के अगेती नर्सरी जो है वो कर रोपाई उपयोगी रहते।
2: बिल्कुल सही कहे। तो ऐसे है कि ये फसल मा ध्यान देना जरूरी है कि बारिश के मौसम में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फसल सड़ सकते या फिर ओमा फफूंद रोग बढ़ सकते। सादा मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स और वायरस रोग की निगरानी रखना जरूरी है, विशेषकर पताल, मिर्ची, भाटा और बेलवर्गी फसल में ये सावधानी बहुत जरूरी है। और यही रकम ले हम खेती में आगू बढ़ सकथन, अगवा सकथन।
3: नर्सरी बीज उपचार और समय मान निंदाई गुड़ाई ले उत्पादन तो बेहतर हो बेच करते और जम्मो फसल के उत्पादन ले हमला ज्यादा ले ज्यादा लाभ होते।
2: तो ऐसे है कि खेती किसानी में सावधानी जरूरी है संगी, सुनना आकाशवाणी और आकाशवाणी के किसान वाणी सलाह जम्मो और हलो किसान वाणी विशेषज्ञ मन के सलाह और अपन स्वयं की मेहनत ले बड़ बढ़िया खेती करके हम खूब मुनाफा कमा सकत हन। अब ये सिरतोन बात है, काबर के हमर किसान संगवारी मन हा अपन अनुभव ले, कृषि विशेषज्ञ मन के सलाह ले, खेती किसानी के बूता ला कर करके कर करके एक एक जोन खेती किसानी के बारीकी वाला समझ चुके हावे। तब ये जम्मो रकम ले हम कोनो जुर मिलके खेती किसानी के बूता करबोन तो निश्चित रूप ले हमला सफलता मिली। और रही बात पर्यावरण के, तो भाई खेती किसानी के बूता करना ही अपन आप में पर्यावरण के संरक्षण हाबे।
3: बिल्कुल सही कहा।
2: खेत के मेड़ मा कहान और तरिया के पार मा कहान, नदिया कछार मा कहान, और ऐसा ढंग ले

0: वातावरण हे, माटी हे, ओकर हिसाब ले हम जगह जगह में पेड़ पौधा घलो रोपत रहिथन। और वैसना जो खेती किसानी के बूता है वो माटी पानी और वातावरण के बड़ महत्व होते।
1: चंपेश्वर भाई एक ठन बात है कि ता आवा अगवान खूब कमावन, अपन मेहनत ज्ञान ले खेती ला उत्तम बनावन, खुद अपन पहचान बनावन, जुर मिल के सफलता पावन।
0: बिल्कुल, जोर मिल के सफलता पावन। हमन अभी बात करत रहे सरिता आकाशवाणी के किसान वाणी के सलाह जम्मो हेलो किसान वाणी के, है ना भाई? तो सलाह बड़ जरूरी है। और हमर कार्यक्रम में अलग अलग विषय में विशेषज्ञ मन आते, अपन अनुभव ला हमर मन संग बांटते, और वो सलाह ला हमन सुनथन गुंथन, और अपन खेती किसानी के बूता में वो जो सलाह है उकर उपयोग करथन। तो वो जब सलाह के जब हम उपयोग करथन तो हमारे बहुत अकन जो समस्या है उकर समाधान अपने अपन हो जाते। काबर की कथे ना कि समस्या के समाधान होते रतिहा के बिहान होते, और बिहान हलाते उमंग के सूरज, तभी तो दिन महान होते। ऐसा नहीं भाई, आज के ये दिन में आज की सलाह क्रम के बारी हबे, तेमा विषय है ड्रैगन फ्रूट के खेती। विशेषज्ञ है नीलिमा डहरिया, शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र सांकरा जिला दुर्ग, और विशेषज्ञ मल्ले गोड़ बात कर रहे थे सरिता साहू। तो सुनथन संगवारी हो आज की सलाह में, विषय है ड्रैगन फ्रूट के खेती।
1: संगी हो फल फलिहारी के बात करन त हमर छत्तीसगढ़ में मौसमी फल जैसे आमा जाम छीता केला पपीता तो हमन बहुत खाए हैं, फिर आजकल बदलत बेरा में वैश्वीकरण के फल स्वरूप विदेशी फल के मांग भी तेजी से बाजार में बढ़ा थे। हमर छत्तीसगढ़ के बाजार में एक ठन बढ़िया फल आजकल देखा में मिला थे जेकर नाम है ड्रैगन फ्रूट। नाम ले ही पता चला थे कि ये विदेशी फल आए, और विटामिन ले भरपूर ये फल के मांग बाजार में बहुत है। और बाजार के मांग के हिसाब ले यदि हमर किसान संगवारी मन खेती किसानी करत है तो लाभ भी बढ़िया मिलते। तो आज की सलाह में हमन जानकारी ले वो ड्रैगन फ्रूट के खेती के बारे में, और जानकारी दे बर विशेषज्ञ हमर बिचाए हैं नीलिमा डहरिया जी, शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन जिला दुर्ग ले। नीलिमा जी राम राम।
2: जम्मू संगवारी मन ला मोर जय जोहर।
1: सबले पहली जैसे कि हमन बात करथन ड्रैगन फ्रूट के, तो ये फल के सामान्य परिचय हमर संगवारी मन ला बता देवा, काबर कि ये विदेशी फल है और बहुत जिन हमर संगवारी मन ला जिज्ञासा हो ही ये फल के बारे में जाने के।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि आप हर बोले हो कि ड्रैगन फ्रूट है जो कि विदेशी फल है, ये हर मुख्यतः कैक्टेसी फैमिली के एक सेहतमंद और पोषक तत्व ले भरपूर फल माने जाते। और मुख्यतः हर जो है थाईलैंड वियतनाम इजराइल और श्रीलंका में हर बहुत लोकप्रिय है। सामान्य परिचय के तौर में मां जो मिनरल्स विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं, और अन्य औषधि गुण भी होते हैं। एक सेवन ले आप मन के जो डायबिटीज है वो कंट्रोल होते, कोलेस्ट्रॉल भी कम करे में सहायक होते, एक मांग हर जो शहरी इलाका में है वो हर ज्यादा है। खर और बाजार में खर कीमत हर चूंकि शहर में मांग ज्यादा है, एक 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक एक हर बिक्री होते। एक हाल ही के दिनों में भारत में खर खेती के ज्यादा चलन बढ़ गए है।
1: ये बढ़िया बात बताओ कि ये जो फल है ओकर मांग भी अच्छा है, भाव भी बढ़िया है नहीं? नीलिमा जी, ये ड्रैगन फ्रूट के खेती हमारे छत्तीसगढ़ में का संभव है, और यदि संभव है तो एक बार कौन से मौसम उपयुक्त है और माटी कौन प्रकार से चाहिए?
2: छत्तीसगढ़ में ड्रैगन फ्रूट पर खेती के अपार संभावना है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट हर कैक्टेसी प्रजाति के ही होते, तो इमा ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हो, ज्यादा तापमान में भी जीवित रही थे। तो छत्तीसगढ़ के गर्म और आर्द्र जलवायु पर बहुत उपयुक्त फल है हर, और एला कम रख रखाव की जरूरत होते हैं, लंबे समय तक इमा उत्पादन भी प्राप्त करे जा सकते। एक बार लगाए के बाद आपमन हर 20 वर्ष तक लगातार आपमन एक हर ले फल प्राप्त कर सकत हो। जलवायु और मिट्टी की बात करे जाए तो एक बार शुष्क, जैसे पहले बताए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे अच्छा होते, और मिट्टी वैसे तो ज्यादातर हर तरह के मिट्टी में उगाए जा सकत है, पर मिट्टी मां पानी निकासी के उचित व्यवस्था होना चाहिए।

0: जेखर लिए रेतीली दोमट से लेकर के दोमट मिट्टी एखर लिए सर्वोत्तम होते। जल जमाव का है कि वह जल जमाव हो ले एखर पौधा खत्म हो जाते, नीचे ले है सड़ जाते तो खत्म हो जाते। एखर से हमारा जल निकास की उचित व्यवस्था करना चाहिए। और अगर फ्रूट लगाए के सही समय की बात करे जाए तो जून जुलाई या फिर फरवरी मार्च महीना लगाए जा सकते।
1: एकर पौधा के बारे में हमारे संगवारी मन ला बताओ कि कैसन दिखते और कैसे एकर जो उत्पादन हमन ले सकता है।
0: चूंकि मैं बताएं कैक्टेसी के हैं, कैक्टेसी प्रजाति के, मतलब कि यह कैक्टस जैसे होते हैं और यह लता चढ़ ऊपर चढ़े वाले पौधा होते हैं। इनमें कांटा भी लगे होते हैं ता अब एला ऊपर चढ़े बर सपोर्ट की जरूरत होते हैं। एखर सेती हम एला पोल और तार है ओखर माध्यम से एला लगाथन। एखर जो कलम है ओमा ले जड़ निकलते, जेन जड़ हर वो पोल ला पकड़ के फिर ऊपर चढ़ते। और हमारा पूर्ण प्रयास करना है कि ओखर फैलाव ऊपर ले हो, ऊपर ऊपर जाकर के ऊपर ले फैले, जेखर ले कि जो फल है वो हमारा

0: कि कैसन दिखते और कैसे एकर जो उत्पादन हमन ले सकता।
1: चूंकि मैं बताएं कैक्टेसी के हैं, कैक्टेसी प्रजाति के हैं, मतलब कि यह कैक्टस जैसे होते हैं और यह लता चढ़ ऊपर चढ़े वाले पौधा होते हैं, इनमें कांटा भी लगे होते हैं, ता अब एला ऊपर चढ़े बर सपोर्ट की जरूरत होते हैं, एखर सेती हम एला पोल और तार है ओखर माध्यम से एला लगाथन। एखर जो कलम है ओमा ले जड़ निकलते, जेन जड़ हर वो पोल ला पकड़ के फिर ऊपर चढ़ते, और हमारा पूर्ण प्रयास करना है कि ओखर फैलाव ऊपर ले हो, ऊपर ऊपर जाकर के ऊपर ले फैले, जेखर ले कि जो फल है वो हमारा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके।
0: अब जउन संगी मन एकर फल या फसल लेना चाहते ओकर खेती बर कैसे खेत के तैयारी करें एला विस्तार ले बताओ।
1: खेती की बात करे जाए तो ड्रैगन फ्रूट के खेती पर सबसे पहली हमला जुताई करना है, खेत ला जुताई करके समतल करना है, ताकि मिट्टी में जो भी खरपतवार मौजूद है, जो भी कीटाणु रोगाणु मौजूद है, वो हर नष्ट हो जाए। और ओखर बाद आप मल्ला जुताई के बाद प्रति हेक्टर के हिसाब से आप मल्ला 70 से 80 टन जो सबले अच्छे सड़े हुए खाद होते हैं ओखर प्रयोग आप मन कर सकत हो। साथ ही आप मन पोटास और फास्फोरस लभी मिट्टी में परीक्षण के आधार पर आप मन खेत तैयार करते समय मिला सकत हो। खेत तैयार हो जाएगी ओखर बाद आप मल्ला खेत तैयार करे के बाद गड्ढा तैयार करना है ओखर बाद, तो गड्ढा तैयार करे बार आप मल्ला 2 बाय 2 मीटर के जो कि कतार से कतार की दूरी होगी, और उमा 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा करेल है। मई के महीना में गड्ढा लगाना है और ओला 15 दिन भर ओला खुला छोड़ देना है, जेखर से थी उमा उचित धूप पहुंची और जो भी धूप धूप के कारण मिट्टी में जो भी हानिकारक कीड़ा मकोड़ा है ओकर अंडा हुई वह नष्ट हो जाएगी। अब बुआई की बात करे जाए तो ड्रैगन फ्रूट के सब बुआई के सबसे अच्छा तरीका होते ओला काट के जो कलम होते जो कटिंग करते हैं ओला लगाए सबसे बढ़िया होते ओला लगाए बर, तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबा कलम आप मल्ला लेना है, और कलम तो आप मन हर कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हो, जो उद्यानिकी महाविद्यालय कॉलेज वहां से भी आप मन प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप मन कटिंग अगर मिल गई तो आप मन ओला गड्ढा में आप मन रोपाई के बाद उमा मिट्टी बालू और जो गोबर के खाद है ओला 1:1:2 के अनुपात में आप मन ओला मिश्रण का भर के पानी उचित पानी से सिंचाई करके
0: पौधा ल रोपित करना है। नीलिमा जी यहू बताऊ कि ड्रैगन फ्रूट जो है ओकर कौन कौन से किस्म होते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से किस्म के उत्पादन ले सकत हन।
1: छत्तीसगढ़ के मौसम और यहाँ के लाल पीली मिट्टी के हिसाब ले ड्रैगन फ्रूट के मुख्यतः 3 किस्म यहाँ बेहद अच्छा परिणाम दिए हुए। तो सबले पहली है रेड ड्रैगन, जेकर जो गूदा है वो हर अंदर ले लाल होते और बाहर ले भी ओखा जो होते और छिलका होते वो हर लाल होते, स्वाद में हर ज्यादा मीठा होते, एक स्थिति बाजार में एक बहुत ज्यादा मांग है। और दूसरा होते व्हाइट ड्रैगन, जिन हर अंदर ले सफेद होते और बाहर ले लाल होते, लेकिन यह कम मीठा होते, यह हर मुख्यतः यह डायबिटिक पेशेंट जन मन रथन है उखर लिए यह बहुत अच्छा होते हैं। और तीसरा है येलो ड्रैगन, जिन हर बाहर ले पीला रंग के हुई और अंदर ले हर सफेद हुई, और स्वाद में थोड़े से खट्टा मीठा रहते हैं, तो एक भी उत्पादन बहुत अच्छा होते हैं। ये 3 किस्म है जो कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से उपयुक्त तो माने जाते हैं। और उत्पादन की बात करें जाए तो छत्तीसगढ़ में तो वैसे अभी फिलहाल रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर में एक उत्पादन होते हैं, लेकिन बस्तर और कोंडागांव में एक सफल जो खेती है वो वहां के स्थानीय किसान भाई मनहर करते हैं। मनहर उत्पादन करके विभिन्न शहर में और यहाँ तक कि राज्य के बाहर में भी ओला बेचते हैं और अपन मुनाफा कमाते हैं।
0: यदि किसान भाई मन ड्रैगन फ्रूट उगावत हैं ओकर पौधा के रोपण करत हैं तो एमा सिंचाई के व्यवस्था कौन रकम ले करही, माने कतका पानी के एमा आवश्यकता होते, कतका पानी देना है, का कम पानी वाला क्षेत्र में भी एकर उत्पादन ले सकत हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एला कम पानी वाले क्षेत्र में भी आसानी से हमन उगा सकत हन, काबर की एमा हमला तो पहली बात उचित जल निकास व्यवस्था हमला चाहिए ही चाहिए। ड्रिप की व्यवस्था हम करते हन, जेखर ले ओला उचित जितना पानी ओला आवश्यक है उतना पानी ओला ड्रिप के माध्यम से पहुंच ही जाते ओला। पानी कम से कम लगते, और जैसे कि मैं बताए भी हूँ कि वो कैक्टेसी फैमिली के हैं, तो नागफनी जैसे जाना तो वो सब मतलब कम

0: पानी लगते हैं, तो वैसे ही ड्रैगन फ्रूट ला भी कम पानी लगते हैं। हाँ, लेकिन उर्वरक वो ओला अधिक मात्रा में ओला जरूरत पड़ते हैं, जिससे कि जो फल है वो हर उखर क्वालिटी बहुत अच्छा रहते।
1: हाँ तो नीलिमा जी, यहू बताओ कि भाई शुरुआत में तो हमन उर्वरक डालते छन, फिर साल भर यदि ओकर पौधा बढ़त है तो अच्छा पैदावार बर कब कब खाद देना है, कतका मात्रा में खाद ला डालना है?
0: एखर लिए तो पहली जो मिट्टी है ओकर जांच कराना सबसे जरूरी है।
1: यानी माटी के जांच बहुत
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: हाँ माटी की जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। ओकर हिसाब से फिर आप मतलब एकदम सटीक वृद्धि चाहिए तो जैविक खाद के प्रयोग आप मन शुरू में कर सकते हो। जैसे कि हम जब हम खेत की तैयारी करते हैं तब हम वो जैविक उर्वरक डाले छन और मिट्टी में पोषक तत्व की कमी के आधार पर हमने पोटास और फास्फोरस डाले छन। उखर बाद प्रत्येक साल आप मन हर जैविक खाद की मात्रा 15 से 20 किलो आप मन हर साल बढ़ा सकत हो। जैसे आप मन हर ड्रैगन फ्रूट ला लगाए हो तो आप मल्ला साल में 3 बार आप मल्ला रासायनिक उर्वरक आप मल्ला देना है। फल लगेगी पहली के अवस्था में आप मन हर यूरिया सुपर फास्फेट और पोटास ला 70, 80 और 60 ग्राम प्रति पौधा आप मल्ला देना है। फल आए के समय और फल तोड़े के दौरान तक भी यूरिया सुपर फास्फेट और पोटास ला आप मल्ला 60, 40 और 100 ग्राम प्रति पौधा के अनुपात में आप मल्ला रासायनिक खाद के रूप में आप मल्ला देना है।
1: अब यहू बतावो कि भाई ड्रैगन फ्रूट के फसल कोनो संगवारी मन लेवा थे तो ये कतका दिन में तैयार हो जाते, माने हम पौधा लगा दे हन तब फल पाए बर कतका इंतजार करे लागी और एकड़ पाछू हमला उत्पादन कतका मिली? काबर कि भाई व्यवसायिक खेती करत थे ये किसान भाई मन तो सबले पहली लागत तो और मुनाफा के बारे में सोचते, एक एकड़ पाछू एकर उत्पादन कतका मिलते और लागत के हिसाब से मुनाफा कतका हो जाते?
0: जैसे आप मन ड्रैगन फ्रूट लगाए हो तो आप मतलब 1 से 1.5 साल बाद आप मतलब फल प्राप्त हुई। मई और जून में जैसे फूल आई से तो अगस्त से दिसंबर तक आप मतलब फल प्राप्त हुई। शुरुआत में जो फल है वो बहुत इक्का दुक्का ही है, इसलिए आप मन ओला अगर बाजार में बेचे की बात करे जाए तो आप मन उतका उत्पादन आप मतलब प्राप्त नहीं हुई। तेखर लिए आप मन अगर कमर्शियल के बात करे जाए तो 2.5 से 3 साल के जब वृक्षर हो जाही तब आप मतलब उचित उत्पादन उखले प्राप्त हुई जला आप मन स्थानीय बाजार में बेच सकत हो। अब उखर कतना उत्पादन होते उखर बात करे जाए तो एक पेड़ ले आप मल्ला कम से कम 20 से 30 किलो तक फल आपन प्राप्त कर सकत हो। और एक हेक्टेयर के बात करे जाए तो 10 से 30 टन तक आपन फल उपज प्राप्त कर सकत हो। बाजार में जैसे अपन हर 100 से 150 रुपए में कहीं कहीं तो 190, 200 तक भी फल के बिक्री होते हैं। एक हेक्टेयर के हिसाब से अपन हर 10 से 15 लाख तक के आमदनी अपन प्राप्त हो जाएगी। शुरुआत में अपन लागत एक हर कम से कम 4 से 5 लाख तक लगी, काबर की नर्सरी नहीं है चूंकि आपके पास तो अपन हर कलम लिहा ड्रिप लगाहू और पोल तैयार करहू तेखर से थी आप मन लागत कम से कम 4 से 5 लाख तो आप मन लगी। तो लागत ना हटा दिया जाए तो आप मन 5 से 6 लाख आप मतलब शुद्ध मुनाफा प्राप्त हो सके।
1: ये बहुत बढ़िया बात है कि ये मुनाफा वाला फसल है और किसान भाई माने ये जो ड्रैगन फ्रूट है कर यदि फसल लगाना चाहते हैं और लगावत हैं तो ये व्यावसायिक रूप से कर खेती करके बढ़िया आमदनी हमन
0: जी
1: ले सकते हैं। तो किसान संगवारी हो, ड्रैगन फ्रूट के बारे में आज हमन चर्चा करें, आशा है कि आप मन कर लाभ जरूर ले हो और इला उगा के व्यावसायिक रूप से उत्पादन करके मुनाफा कमा हो। तो नीलिमा डहरिया जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए और अतका सुघर जानकारी दे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: और सरिता, बड़ बढ़िया भी सलाह सुनें ड्रैगन फ्रूट के खेती। विशेषज्ञ रहीं नीलिमा डहरिया, शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र साकरा जिला दुर्ग और उकर मन संगोड बात तो ही करे हा बस। और ये देख, अब एक ठन सूचना हमारे कर हाबे, ये हरे आगामी मंगलवार के प्रसारित हो या किसान वाणी के सूचना।
1: तो संगवारी हो अवैया मंगलवार के 1 सितंबर 2026 के प्रसारित हो या हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही सब्जियों में जैविक एवं अजैविक तनाव प्रबंधन। ये विषय ऊपर आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान बर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो ही डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर।

अदब शरीर क्रिया विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमार फोन नंबर है 400-3482, 400-3483, 400-3484 और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 1 सितंबर 2026 के सुबह 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही। सूचना सिरावत है।

0: भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: और सरिता आप बेरा है कृषक प्रश्न मंच के, तो संगवारी हो आज के प्रश्न ला लिखाओ। आज के प्रश्न है खरीफ फसल के प्याज के रोपाई कौन से महीना में होते। आज के प्रश्न है संगवारी हो खरीफ फसल के प्याज के रोपाई कौन से महीना में होते। और पांचों हफ्ता के प्रश्न रहीस धान में लगैया प्रमुख रोग कौन कौन से है, तो एकर सही उत्तर है झुलसा रोग, भूरा धब्बा रोग, शीत ब्लाइंड जैसन औ कतको रोग है।
4: और सही जवाब लिख के हमर तीर पठोए हैं हमारे संगवारी मन श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल, शिवम साहू, मदनपुर कवर्धा ले, बठेना पाटन ले हैं बलकरण, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, प्रयाण वर्मा मन, लोरमी चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव मन, ओजस्वी यादव, धमधा सुखरी कला ले हैं उत्तम सिंह जंघेल, अमित सकून, आरुषि, ओशिका, अंजलि जंघेल में।
3: और उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, दिव्यांश, भूपेश, शिवा निषाद, तेंदु भाटा, मगर लोटले। और ये तो रही से संगवारी मन के नाम, ता संगवारी मन बड़ बढ़िया अभी जवाब पठोई साहब है, तो जम्मू संगवारी मन ला सही जवाब पठोए खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई। और गोट आते गोट जाते गोट कहाँ से रहते, लेकिन गोट बात करत करत संगवारी हो मन होते एक आठ ठन गीत सुने के, तब सुनथन गीत पंचराम मिर्झा और साथी मन के स्वर्मा
0: मोर छत।

0: संगवारी हो अभी सुनेन गीत पंचराम मिर्झा और साथी मन के स्वरमा। सरिता अभी बरसात के मौसम है और बरसात के मौसम हमर प्रकृति खातिर, हमर पेड़ पौधा खातिर, हमर तरिया नरवा खातिर, कुआ खातिर बड़ बढ़िया रथे। तो नरवा के पानी बोहा जाते, नदिया के पानी घलो बोहा जाते। फिर अभी सबले बढ़िया हम काम कर सकथन कि जतका भी बरसात के पानी आवत है तेला बढ़िया तरिया में सकेल के रख लेवन, कुआ में अपने अपन सकला जाते। काबर की हमल ना पानी के जो महत्ता है ओला समझना जरूरी है। जब गर्मी के समय आते तो गर्मी के समय में हमन देखथन कि कोनो कोनो जगह जल स्रोत सुखा जाते। तो हमन ला यहो जिनिस के ध्यान रखना है कि जतका तरियम पानी रही, कुआ में पानी रही, तो वो हिसाब से जल के स्रोत बने रहते।
1: एकर संगे संग चंपेश्वर की जल के जो स्तर है, भूजल स्तर के ला बनाए बर हमला वाटर हार्वेस्टिंग माने जल के संचयन करे के बहुत बढ़िया माध्यम एला हम घरों घर लगा सकथन। और जो छत के पानी जो बोहा जाते ओला भुइया के अंदर तक पहुंचा सकथन।
0: बिल्कुल सही बात कहे हस। अब मैं दूसरैया में आहूं कि पेड़ पौधा के घलो बड़ महत्व हावे। ए मन तो भाई माटी के कटाव ला रोकथे। तो जतका ज्यादा होए हम पेड़ पौधा लगावन और पेड़ लगावन और पेड़ लगा के जतन करन, तो पेड़ ला बढ़ाए बर ना ये जो बरसात के सीजन है वो बड़ बढ़िया सीजन होते। हम देखथन कि गांव के जोन हमार संगवारी मन है ओकर मन में तो अपने अपन प्रकृति के सेवा जाते। जैसे कोनो उमेर देखीस बारी बखरी देखी थन अपने अपन पेड़ पौधा लगा डरते, खुद अपन बारी में साग भाजी उपजाते, खुद बढ़िया खाते। और अभी तो बीच में हमार संगवारी मन अपन पैरावट ले पैरा फुटू, बढ़िया देसी पैरा फुटू निकाल निकाल के खाए हवे। तो ये जो जम्मो जो जिनिस है ये चीज के ऊपर हमारे किसान संगवारी मन बड़ मन लगा के ध्यान देते। तो प्रकृति के संरक्षण सबके दिमाग में हावे। बस हमला ये देखना है कि जे जगह उपयुक्त लगे

0: सही लगे वो जगह पेड़ लगावन, और पेड़ लगा के बस मत छोड़न, पेड़ लगावन, वो पेड़ लगा के जतन कर। खेती किसानी के बात करें तभी हमारे युवा किसान संगवारी मन है बढ़ चढ़ के खेती किसानी के बूता में अगवावत आवे थे।
1: और साक्षर जो युवा है हमारे यदि खेती किसानी कर ही तो वह गजब के हो ही है नी, तो ये सुघर आरो संग हुआ थे जाए के बेरा और वो जावत बिरावत संगवारी मन ला बता दन। किसान वाणी के प्रायोजक रही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो संगवारी हो देव विदा, जम्मो संगवारी मन ला सरिता
0: और चंपेश्वर के राम।

कार्यक्रम किसानवाड़ी अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:01 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं अभिजीत पोहनकर के गाए कुछ गैर फिल्म गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गैर फिल्मी नगमा। इस गीत को लिखा और स्वर दिया और संगीत से सजाया है अभिजीत पोहनकर ने।

0: अभिजीत बहन करके गाए कुछ गैर फिल्मी गीत, तभी श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
2: तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अरे ये वाला सस्ता है, ले लेते हैं ना।
6: ना बॉस, सस्ता नहीं, सही जाइए। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी में नो सरप्राइज। डोंट जस्ट बाय, रेज योर स्टैंडर्ड, अपनाओ इंडियन स्टैंडर्ड।
7: जी हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो भरोसा है, और इस भरोसे की पहचान है BIS क्वालिटी मार्क्स, ISI, CRS और हॉलमार्क। सो बी ए स्मार्ट कंज्यूमर एंड रेज योर स्टैंडर्ड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स।

0: भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: और अब कार्यक्रम में अगला गैर फिल्मी नगमा लीजिए सुनिए। इस गीत को लिखा, संगीत और स्वर दिया है अभिजीत पोहनकर।

0: और अब कार्यक्रम सुगम संगीत में समय हुआ है साइबर जागृति अभियान के तहत कुछ सूचनाओं का।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूँ उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान आधारित आवश्यक चेतावनी। आज विज्ञान के युग में मोबाइल फोन, नेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि बहुत ही उपयोगी हैं, किंतु तब जब हम सभी पूरी तरह चैतन्य रहे, सजग रहे। जैसे छात्राओं और महिलाओं से अनुरोध है, अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखें, गुप्त रखें, अनजान लिंक से बचकर रहें, फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहें, अनजान महिला या पुरुष के फ्रेंड रिक्वेस्ट पर 100 बार विचार करें, तभी कदम आगे बढ़ाएं। किसी की मीठी और अपनत्व भरी बातों पर और उनके सलाह पर सहज विश्वास न करें, क्योंकि साइबर के अपराधी उल्लू हर शाख पर बैठे हैं। स्वयं बचकर रहें और को भी इससे बचाएं। और किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आने पर डायल 1930 पर तत्काल कॉल करें। जनहित में सदैव, बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
0: साइबर जागृति अभियान के तहत ये सूचना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज श्रोता सुन रहे थे अभिजीत पुहनकर के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। और अब इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

श्रोताओं, आज की तारीख भारतीय खेल जगत के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम याद करते हैं उस खिलाड़ी को जिनकी हॉकी स्टिक के जादू की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हुई। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में, और उनकी जयंती को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रोताओं, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को याद करने का दिन है, साथ ही हमें अपने आप से एक सवाल पूछने का भी मौका देता है ये दिन, कि क्या हमारे जीवन में खेल के लिए जगह है? क्या हमारे बच्चे मैदान में उतने ही उत्साह से जाते हैं जितने उत्साह से मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठते हैं? क्या हम अपने बच्चों से केवल अच्छे अंक लाने की उम्मीद करते हैं, या उन्हें हारना गिरना और फिर उठना भी सिखाते हैं? क्योंकि खेल सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं, खेल जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है।

श्रोताओं, जरा एक मैदान की कल्पना कीजिए। सीटी बजती है, खिलाड़ी अपनी जगह संभालते हैं, सामने प्रतिद्वंदी हैं और फिर शुरू होता है मुकाबला। कुछ मिनटों में कोई आगे निकल जाता है, किसी से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई गिर जाता है तो कोई आखिरी क्षण में बाजी पलट देता है। यही तो जिंदगी भी है, कभी हम आगे होते हैं कभी पीछे, तो कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं, फिर कभी होता है यूं कि पूरी कोशिश के बावजूद परिणाम हमारे मन के मुताबिक नहीं आता। लेकिन खेल एक बात हमें ज़रूर सिखाता है कि हार के बाद भी अगला मुकाबला खेलना है, इसलिए खेल का सबसे बड़ा सबक शायद जीत से नहीं है, हार के बाद दोबारा मैदान में उतरने की हिम्मत है। खेल हमें हार को स्वीकार कर फिर जीत की तैयारी करना भी सिखाता है श्रोताओं। और खेल की इस भावना को हिंदी सिनेमा में भी कई खूबसूरत कहानियों में दिखाया गया है। जैसे चर्चा करें फिल्म चक दे इंडिया की, इसमें महिला हॉकी के माध्यम से टीम भावना और देश के लिए एक साथ खेलने का संदेश दिया गया। लगान फिल्म में क्रिकेट ने अलग अलग लोगों को एक लक्ष्य के लिए एकजुट किया। फिल्म इकबाल ने बताया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सपनों को छोड़ना ज़रूरी नहीं। और फिल्म भाग मिल्खा भाग ने हमें खिलाड़ी की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष की लंबी दौड़ दिखाई। श्रोताओं, इन फिल्मों की कहानियाँ अलग हैं लेकिन संदेश एक है। मैदान में सिर्फ शरीर नहीं उतरता, खिलाड़ी का आत्मविश्वास, अनुशासन और हौसला भी उतरता है और जीत से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देना।

श्रोताओं, भारतीय खेल इतिहास में मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका जन्म 29 अगस्त आज ही के दिन साल 1905 को हुआ। हॉकी के मैदान पर उनके असाधारण कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। साल 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की लगातार 3 स्वर्णिम सफलताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी खासियत थी गेंद पर उनका अद्भुत नियंत्रण। मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य केवल प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, उसके पीछे था अभ्यास, अनुशासन, एकाग्रता और देश के लिए खेलने का जुनून। श्रोताओं, खेल में खिलाड़ी अकेला नहीं होता, उसके पीछे परिवार, कोच, साथी खिलाड़ी होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका अपना विश्वास। इसी विश्वास और उम्मीद के भाव के साथ आइए अब सुनते हैं एक और प्रेरणादायक गीत।

बात उन बेटियों की जिन्होंने खेल के मैदान में कई पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ दिया। आज हमारी बेटियां बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, क्रिकेट, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, हॉकी और हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन साथियों, एक लड़की के लिए उसकी पहली जीत अक्सर पदक नहीं होती, उसकी पहली जीत घर से निकलकर मैदान तक पहुंचना है। जब वे कहती हैं मुझे खेलना है और परिवार कहता है जाओ खेलो, वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। इसलिए इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर बेटियों के लिए एक बात ज़रूर कहनी चाहिए हमें कि उन्हें सिर्फ दर्शक मत बनाइए, उन्हें खिलाड़ी बनने का पूरा अवसर दीजिए।

श्रोताओं, भारत की खेल प्रतिभा केवल बड़े शहरों और बड़े स्टेडियम में नहीं, हमारे गांव में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों में रफ्तार है, बाहों में ताकत है और आंखों में सपना है। किसी गांव के स्कूल का छोटा सा मैदान, किसी पंचायत का खाली परिसर, कहीं मिट्टी पर बनी कबड्डी की रेखाएं, तो यहीं से कई प्रतिभाएं निकल सकती हैं। साथियों, गांव में खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, दौड़, वॉलीबॉल, फुटबॉल और कई पारंपरिक खेल आज भी बच्चों को मैदान से जोड़ सकते हैं। कभी सुविधा कम होती है, कभी जूते अच्छे नहीं होते, साधन सीमित होते हैं, लेकिन सपने बड़े होते हैं। और किसी खिलाड़ी के सपनों को शुरुआत में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, किसी का भरोसा, किसी शिक्षक का, किसी कोच का, माता पिता का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्हें कह सके तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आज के बच्चों की दुनिया बदल गई है, मोबाइल है, वीडियो गेम्स है, सोशल मीडिया है और इन सब के साथ पढ़ाई का दबाव भी उन पर बहुत है, तो ऐसे में खेल का महत्व और भी बढ़ गया हमारे जीवन में। बच्चे मैदान में सिर्फ दौड़ते नहीं, वे सीखते हैं साथियों के साथ काम करना, नियमों का पालन करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, हार स्वीकार करना और जीतने के बाद भी संयम रखना। खेल बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा चैंपियन बने, ज़रूरी ये है कि हर बच्चे को खेलने का समान अवसर मिले। उसे पदक की चिंता बाद में करने दीजिए, पहले उसे मैदान तक पहुँचाइए।

0: श्रोताओं, हम अक्सर खिलाड़ी की जीत देखते हैं लेकिन उसकी तैयारी नहीं देखते। हम पदक देखते हैं लेकिन उसके पीछे की सुबह नहीं देखते। जब पूरा शहर सो रहा होता है, खिलाड़ी दौड़ रहा होता है। जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं तो वो अभ्यास करता है। कभी चोट लगती है, हार मिलती है, कभी चयन नहीं होता, उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन फिर एक दिन वही खिलाड़ी मैदान पर वापस लौटता है, क्योंकि वो खिलाड़ी जानता है एक हार पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं होती। श्रोताओं, किसी खिलाड़ी के गले में जब पदक पड़ता है तो पूरा देश गर्व करता है, लेकिन क्या पदक ही सब कुछ है? नहीं। किसी बच्चे का रोज़ मैदान तक जाना, किसी खिलाड़ी का अपनी कमज़ोरी पर काम करना और किसी बेटी का सामाजिक झिझक को पीछे छोड़कर खेल में उतरना, किसी गांव के युवा का सीमित साधनों के बावजूद अभ्यास जारी रखना, ये भी जीत है। क्योंकि हर खिलाड़ी का सफ़र अलग होता है। किसी की मंजिल ओलंपिक होती है, किसी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, किसी की जिला स्तरीय प्रतियोगिता, किसी की मंजिल सिर्फ इतना ही है कि वह खुद को कल से बेहतर बनाए, और ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं। तो श्रोताओं, इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक छोटा सा संकल्प, बच्चों को कुछ समय मैदान के लिए दें, थोड़ा खुद भी पैदल चले, योग करें, साइकिल चलाएं, कोई खेल खेलें। खेल को सिर्फ जीतने का माध्यम नहीं, स्वस्थ और अनुशासित जीवन का हिस्सा भी बनाएं। और किसी बच्चे में खेल की प्रतिभा दिखे तो उसका मजाक न बनाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज जिस बच्चे के हाथ में हम सिर्फ एक बैट या हॉकी स्टिक देख रहे हैं, कल उसी बच्चे के हाथ में हमारे देश का तिरंगा भी हो सकता है। और अब इन्हीं बातों के साथ दीजिए कार्यक्रम रजनीगंधा से मुझे अनुमति। FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका के शिकागो

0: बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है

0: कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के

0: राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods.

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म डंकी से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे और आईपी सिंह के, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: तो आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादा नहीं है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं तुझे चाहूंगा।
3: लीना, फिर अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक
1: घर पर ही थी और कहां थी?
2: नेमरा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, अरे क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे, मुझे लड़ोगे?
1: देख, आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ।

मीरा चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम झोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझ था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने भाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

फिल्म मंजली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: फिल्म सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।

सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। तुम मेरे सामने हो खिलते फूलों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहटों से रोशन है ये जहां, तुम्हारे नैनों की चमक जैसे सितारे हैं, तुम्हारे होठों की हंसी जैसे बहारें हैं।

तुम्हारे बिना ये दिल वीरान हो गया, तुम्हारी यादों का साया मेरा सुकून हो गया, तुम्हारे बिना ये रास्ते अनजाने हैं, तुम्हारे बिना ये दिल बंजारा हो गया।

चांदनी रात तुम्हारे बिना अपनी चमक खो देती है। साथ बिताए लम्हे, उन लम्हों की यादें दिल में मीठी खुशबू घोल देती है। तुम्हारी मुस्कान शहद की बूंद, मेरी नजरों में हो तुम समाए, इन नजरों के अलावा हर नजर से तुम्हें खुदा बचाए।

तुम्हारे चेहरे पे छाई जुल्फें दिल को छू गईं, तबस्सुम ने जादू कर दिया, तुम्हारी हंसी की खनक एक धुन बन गई, ख्यालों में जो चेहरा था तुम्हारे दीदार से ख्याल एक गीत बन गया।

0: एक अजनबी दास्तां की तलाश है, एक नए अफसाने को दिल ढूंढ रहा है, दिल की राहों में एक नया सपना है, हर पल में छुपी एक कहानी है।
1: जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में।

0: खरीदार नहीं हो सकता।
1: जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ। दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है, तुमसे रात मुलाकात क्या हुई, जिंदगी मुस्कुराई है।

0: एक बात कहूं, चेहरा रूप रंग हर अदा है रूखी रूखी, जब तक ना हो इसमें इश्क की चमक, रहेगी जिंदगी सूखी सूखी। गुस्ताखी माफ।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताख।

0: सुनाती हूँ। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सृजन भारती के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की सृजन भारती गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है। सृजन भारती के इस आयोजन में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने माने
3: शिक्षकों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया

0: है कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकिल। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing.